0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो इशारा करता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि हम बात करेंगे हिंदी में कहा जाता है साइबर धोखाधड़ी और अंग्रेजी में कहा जाता है साइबर फ्रॉड। इससे कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, इससे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो यकीन मानिए कि रात को चादर तान कर आप सो सकते हैं, अदरवाइज रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है। इसी के बारे में बातें करेंगे। डिजिटल माध्यमों, जैसे कि बात निकल कर सामने आती है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी है साइबर फ्रॉड, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि पीड़ितों की निजी जानकारी को चुराना या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसके बारे में डिटेल में और बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरु शारदा 90.8 FM। आज का सब्जेक्ट है साइबर फ्रॉड।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
3: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
5: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि साइबर धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता अभियान हम चलाते रहें, हम आपको अपडेट करते रहें। यही वजह है कि इस प्रकार के जो घोटाले हैं, इस प्रकार का जो फ्रॉड है, उससे बचने बचाने के लिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रहे हैं और भारत सरकार भी अलर्ट है। इसीलिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर हम आप तक ये खास बातें पहुंचा रहे हैं। इस साइबर धोखाधड़ियों की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनका असर नागरिकों पर पड़ता है। उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ छल होता है, उनके साथ फरेब होता है। और इस बुरे असर से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया, यानी कि अवेयरनेस एक्टिविटी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और चूंकि रेडियो स्टेशन का जो एक दायरा है, यानी कि आपका हमारा जो एक संबंध है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बीच में पहुंचते हैं, अर्ध शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, तो यानी कि एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM आपसे कहता है कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, इससे आप अपने आप को बचा कर रखें ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपके रुपए का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरी यानी गगन के साथ। आज मैं बात कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। और इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले डिटेल निकल कर ये सामने आती है कि जो धोखेबाज लोग हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, वो आर्थिक नुकसान आपको पहुंचाते हैं। और कई प्रकार की एक ठगी होती है, जैसे फिशिंग। इसके अंतर्गत होता क्या है कि फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर बैंक विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगना। दूसरी बात सामने आती है विशिंग और स्मिशिंग, यानी कि फोन कॉल जिसको विशिंग और एसएमएस इसको स्मिशिंग के जरिए बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी या कार्ड की जानकारी वो लोग चुराते हैं, वो आपसे मांगते हैं। लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। और पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की निजी जानकारी जैसे कि नाम आधार नंबर चुराकर उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोलना या लोन लेना। रैंसमवेयर यानी कि कंप्यूटर की फाइलों को लॉक यानी कि एन्क्रिप्ट कर देना और उन्हें खोलने के बदले पैसे यानी कि फिरौती की मांग करना। इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये भी एक प्रकार का स्कैम है, यानी कि शेयर ट्रेडिंग या पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए उकसाना। और हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो इस प्रकार की ठगी से आप अपने आप को बचा कर रखें। सिम स्वैप यानी कि धोखे से नया सिम कार्ड निकलवा कर बैंक खातों के ओटीपी प्राप्त करना। तो बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, तो आपका फर्ज बनता है कि साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर ये खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुरु शारदा 90.8 एफएम के जरिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी के बारे में। इससे बचने के तमाम उपाय हैं, कौन कौन से वो टाइप्स, उसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूं। सोशल मीडिया पर नकली विज्ञापन और वीडियो घोटालेबाज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्टिव एड वो लोग चलाते हैं, या यूं कहें कि आकर्षक विज्ञापन वो चलाते हैं। अक्सर मशहूर हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री के नकली या एडिट किए हुए वीडियो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं और ये वीडियो शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोने में निवेश के लिए पक्के रिटर्न या गुप्त तरीकों का वादा करते हैं और कोई भी सरकारी संस्था या मशहूर हस्ती व्यक्तिगत निवेश की सलाह नहीं देती है और ना ही मुनाफे की गारंटी देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अलर्ट रहें और इस प्रकार की साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और भी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, बस यही कहूंगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल न्यूज़ सुनो शारदा 90.8 FM, इंकलाबी जिद्दी।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। साइबर ठगी से अपने आप को बचा कर रखिए, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, यही उद्देश्य इस प्रोग्राम का। भारत सरकार के साथ मिलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात निकल कर अब ये सामने आती है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम यानी कि ट्रेंडिंग ग्रुप्स, लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता है और वादे किए जाते हैं कि मुफ्त ट्रेनिंग टिप्स, सेबी से रजिस्टर्ड एक्सपर्ट आपको पक्का मुनाफा देने की गारंटी देते हैं और इन ग्रुप्स के अंदर फर्जी सदस्य बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स वो लोग शेयर करते हैं। पीड़ितों को धीरे धीरे निवेश करने के लिए राजी किया जाता है। भरोसा बनने में कई दिन या हफ्ते वो लोग लगाते हैं, यानी कि आपके ऊपर काम करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं और असलियत ग्रुप के ज्यादातर सदस्य भी इस घोटाले का हिस्सा होते हैं। ये जो जानकारी है भारत सरकार के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस प्रकार की ठगी में ना फंसें, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को दूर रखिए। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। ऑनलाइन दोस्ती एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप बन जाती है दोस्तों। स्कैमर सोशल मीडिया डेटिंग एप्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रेगुलर आपसे चैट करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सामने वाला दोस्त मेरा ही सच्चा दोस्त है, लेकिन इमोशनल भरोसा वो लोग बनाते हैं, भरोसा वो जीतते हैं और कुछ समय के बाद वो इन्वेस्टमेंट के मौके बताते हैं। और एक अलर्ट मैसेज यानी कि चेतावनी का संकेत ये होता है कि कोई भी ऑनलाइन अजनबी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जोर दे, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक रेड अलर्ट है, वहीं आप अलर्ट हो जाइए। और बात करें तो फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट यानी कि पीड़ितों से जो लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनको हमारी तरफ से अलर्ट मैसेज है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट प्ले स्टोर के बाहर किसी अनजान लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल करने और किसी फर्जी वेबसाइट के जरिए पैसे लगाने के लिए अगर वो कह रहे हैं, आपसे कहा जाता है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म फर्जी मुनाफा, फर्जी अकाउंट बैलेंस और पैसे निकालने के फर्जी विकल्प दिखाते हैं। असल में होता क्या है कि पैसा सीधे धोखेबाजों के पास चला जाता है और जब पीड़ित तो पैसे निकालने की कोशिश करता है तो ऐप काम करना बंद कर देती है और वेबसाइट गायब हो जाती है। टैक्स या फीस के नाम पर और पैसे मांगे जाते हैं। इस स्टेज तक आते आते पैसा पहले ही आपका डूब चुका होता है। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ठगी से कैसे अपने आप को बचा कर रखें। सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी सलाह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया विज्ञापनों या अनजान लोगों से मिले निवेश की सलाह पर कभी आप लोग भरोसा ना करें, यकीन बिल्कुल भी ना करें। अनजान लिंक या एपेक फाइलों से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। आधिकारिक स्रोतों पर सेबी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि आप करें। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर डिजिटल अरेस्ट स्कीम की पूरी जानकारी, यानी कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का धोखा है, धोखाधड़ी है। इसके अंतर्गत बात निकल कर ये सामने आती है कि इसमें जो अपराधी है वो फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पुलिस या सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करके लोगों को डराने का वो काम करते हैं, और वो पीड़ित को बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल। स्कैमर कहता है कि आपसे पूछताछ की जाएगी, जिसका मतलब है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही कॉल कट कर सकते हैं, और पीड़ितों को कई घंटों या यूं कहें कि कई दिनों तक कॉल पर ही उलझाए रखते हैं ताकि उनके मन में डर और घबराहट पैदा हो जाए। कभी कभी वो वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनते हैं या असली दिखने के लिए नकली पहचान पत्र या यूं कहें कि आईडी कार्ड्स वो लोग दिखाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को सूचित करें, और जो नंबर मैंने आपको बताया 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा cybercrime.gov.in पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखिए। इस प्रकार के जो फ्रॉडर हैं, जो धोखेबाज हैं, वो एक व्यक्ति को अगर पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या वो पीड़ित व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है, तो उनसे पैसे के लेन देन की जांच करवाने के लिए या मामले को चुप या रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो रुपया मांगते हैं। पैसे मिलते ही जालसाज लोग गायब हो जाते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कभी भी किसी मामले को बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत फोन काट दें। अपनी कोई भी निजी जानकारी आप साझा ना करें। अगर आप किसी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो फिर मैं दोहराता हूं, 1930 पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उन लोगों का हथियार ये है, डर उनका हथियार है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। तो बहुत सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दी, बस फर्ज आपका बनता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और एक लाइन हमेशा याद आती है जो अक्सर हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुनते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका आरजे शशि कपूर। आज का हमारा एपिसोड काफी खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे पोषण की और उसका संबंध हमारे पर्यावरण से कैसे है। आपको तो पता ही है हमारे देश में पोषण माह काफी बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोषण माह और जलवायु परिवर्तन का आपस में क्या रिश्ता, यही जानने के लिए हमारे साथ हैं गांव की समझदार ज्ञानी टीकन भाभी। आइए उनका स्वागत करते हैं। तो टीकन भाभी, आपका कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर अपने रेडियो स्टेशन पे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इतने जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, पोषण और जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा संबंध है, और अगर हम समझ लें तो गांव समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, लेकिन सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पोषण माह है क्या और इसे मनाने की जरूरत क्यों पड़ती है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन एक तो तुम बहुत सवाल पूछते हो, सेहतिया जी ने बताया था। खैर चलो फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आज आप श्रोताओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका और मेरा दोनों का फर्ज बनता है कि हम अपने श्रोताओं को छोटी से छोटी जानकारी जलवायु परिवर्तन पर उपलब्ध कराएं, ताकि जिन श्रोताओं ने पहली एपिसोड नहीं सुनी है वो जान पाएं। पोषण माह असल में एक जन आंदोलन है जो पूरे भारत में हर साल चलाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को सही खान पान, बच्चों और माताओं की सेहत और पोषण की अहमियत के बारे में जागरूक करना। आज भी हमारे देश में करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। गर्भवती महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं, किशोरियां ताकतवर नहीं बन पा रही हैं, और ये सिर्फ पेट भरने से नहीं होता बल्कि शरीर को जरूरी विटामिन, प्रोटीन, खनिज भी चाहिए। इसलिए सरकार, आंगनवाड़ी, पंचायत, स्कूल और हम सब मिलकर यह महीना खास तौर पर मनाते हैं, ताकि हर व्यक्ति तक, हर घर तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक संदेश पहुंच पाए।
0: वाह, यानी ये सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि हम सब का अभियान है।
1: बिल्कुल भैया, सही कहा आपने, ये सरकार का अकेले काम नहीं और सरकार को भी सभी की जरूरत है। हम सभी मिलकर इस पोषण अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठाएंगे, तभी अभियान सफल हो पाएगा।
0: भाभी, इस बार मैंने सुना है कि पोषण माह में एक नया अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, ये क्या है?
1: हाँ, एक पेड़ माँ के नाम, ये तो बहुत सुंदर पहल है भैया। सोचिए, हर कोई अपनी माँ को सम्मान देता है, अब इस ओर हम एक कदम और बढ़ाएंगे। इस अभियान में हर इंसान से कहा गया है कि अपनी माँ यानी धरती माँ के नाम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं।
0: लेकिन टीकन भाभी, इससे पोषण में क्या फर्क पड़ेगा?
1: हाँ तो देखो, सेहतिया जी ने जैसे कहा था कि आप सवाल बहुत पूछते हैं, आपका एक और सवाल मेरे से है, लेकिन आपके सारे सवाल जनता को जागरूक करने के लिए हैं, समाज के लोगों तक छोटी छोटी जानकारी पहुंचाने के लिए हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान का पोषण में क्या महत्व है। भैया देखो, पेड़ कोई भी हो सकता है, फल वाला, पेड़ वाला, जैसे आम, अमरूद, नींबू या फिर कोई देसी पेड़। हमारे पर्यावरण को जो मजबूत करे, जब हम पेड़ लगाते हैं तो उससे दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, पोषण सुरक्षा, यानी फलदार पेड़ों से बच्चों और बड़ों को सालों तक पोषण मिलता रहेगा, और दूसरा, जलवायु सुरक्षा, यानी पेड़ धरती को ठंडा रखते हैं, पानी रोकते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और जैसा कि भैया मैं आपके माध्यम से, अपने माध्यम से हमारे श्रोताओं को, सुनो शारदा के श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि माँ के नाम से पेड़ एक भावनात्मक पहल है जो कि लोगों से हमें जोड़ता है। लोग सिर्फ लगाते नहीं बल्कि उसे पालते हैं, पोसते हैं, और बिल्कुल अपनी संतान की तरह।
0: वाह, कितना प्यारा विचार है, एक तरफ माँ का सम्मान और दूसरी तरफ धरती माँ की रक्षा।

0: अच्छा टीकन भाभी, आपने शुरुआत में कहा था कि पोषण और जलवायु का गहरा रिश्ता है, जरा आसान भाषा में समझाइए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल समझाऊंगी भैया। देखो मौसम बदल रहा है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, बारिश का समय गड़बड़ा गया है, इससे खेतों की पैदावार लगातार घट रही है। जब फसल कम होगी तो दाल सब्जी महंगे हो जाएंगे, गरीब परिवार के लोग नहीं खरीद पाएंगे, बच्चे हरी सब्जियां, दाल दूध से वंचित हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? यानी सीधे सीधे कुपोषण बढ़ेगा। दूसरी ओर अगर हम पोषण समझदारी से खेती करें, जैसे मोटे अनाज ज्वार बाजरा रागी सब्जियां और देसी फल उगाएं, तो हमें अच्छा खाना तो मिलेगा ही, साथ ही खेत भी मौसम की मार सह पाएंगे। यानी अगर जलवायु बदलती है तो पोषण प्रभावित होता है, और अगर पोषण मजबूत हो तो जलवायु संकट का सामना आसान हो जाता है।
0: मतलब आपके कहने का ये है कि दोनों का रिश्ता गाड़ी के दो पहियों जैसा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों का ही रिश्ता गाड़ी के दो पहियों जैसा है, पोषण और जलवायु का।
0: अक्सर पोषण और बच्चों की देखभाल को औरतों का काम माना जाता है, लेकिन इस बार पोषण माह में पुरुषों की भूमिका पर भी जोर है, ऐसा क्यों?
1: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। देखिए पोषण सिर्फ औरतों का काम नहीं है, बच्चे पूरे परिवार के होते हैं। अगर पुरुष जिम्मेदारी लेंगे तो परिवार और मजबूत होगा। जब पुरुष खुलेआम कहते हैं पोषण सबका है, तो समाज में बड़ा संदेश जाता है। धीरे धीरे यह धारणा टूटेगी कि खाना पिलाना सिर्फ औरतों का काम है।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, अगर पति पिता बेटे भी साथ आ जाएं तो घर का बोझ आधा हो जाएगा। तो भाभी गांव में लोग क्या क्या छोटे छोटे कदम उठाएं जिससे पोषण भी सुधरे और जलवायु भी सुरक्षित रहे?
1: हाँ मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि पोषण भी सुधरे और जलवायु भी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहला काम यह कर सकते हैं कि किचन गार्डन जैसे घर के हर कोने में थोड़ी बहुत सब्जी या बाग लगाना, मोटे अनाज की खेती, मिसाल के तौर पर बाजरा ज्वार रागी जैसे अनाज, सरसों जो कि बेहद सेहतमंद भी हैं, उन्हें लगा देना।
0: भाभी फलदार पेड़ भी तो लगा सकते हैं, जैसे आम अमरूद नींबू सहजन, बच्चों को विटामिन मिलेगी।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं लगा सकते हैं आम अमरूद नींबू और सहजन, हमें तो ये बिल्कुल लगाने चाहिए, इससे भोजन में विविधता आती है। सिर्फ चावल आलू पर निर्भर ना रहें, दाल हरी सब्जी दूध अंडा सब शामिल करें, भोजन की बर्बादी को रोकें और जितना जरूरी हो उतना ही पकाएं। ग्राम स्तर पर जागरूकता यानी कि पंचायत, महिला समूह, युवक मिलकर नाटक गीत रैली के माध्यम से संदेश फैला सकते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य और जलवायु आपस में कैसे संबंधित हैं।
0: वाह भाभी कितनी बढ़िया बातें बताई आपने, अब जाते जाते हमारे श्रोताओं को एक संदेश भी दीजिए।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगी, मैं अपने प्यारे भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि याद रखिए अच्छा पोषण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए जरूरी है। जलवायु बदल रही है लेकिन अगर हम मिलकर पौधे लगाएंगे, बाग बगीचे बनाएंगे और देसी अनाज अपनाएंगे तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, ये सिर्फ एक अभियान नहीं, ये एक भावना है जो हमें और आपको जोड़ती है। माँ और धरती को धन्यवाद देने का एक सुंदर तरीका है और पर्यावरण की रक्षा में एक सफल अभियान है। तो आओ इस पोषण माह हम सब संकल्प लें, हर घर पोषण युक्त, हर गाँव हरा भरा।
0: बिल्कुल, और अब आगे हम बात करेंगे हमारे देश की कई सरकारी योजनाओं के बारे में, जो कैसे हमारे पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में और साथ ही साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी लड़ रही हैं। तो भाभी सबसे पहले बताइए कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी कि NAPCC क्या है और ये पोषण से कैसे जुड़ी है?
1: हाँ मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगी कि ये NAPCC क्या है और ये कैसे हमारे पोषण से सीधे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, भारत सरकार की एक योजना है जो 2008 में शुरू हुई थी। इसका मकसद है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना। इसके तहत एक खास मिशन है, सतत कृषि मिशन जो किसानों को ऐसे तरीके सिखाता है जिससे वे खेती जलवायु के हिसाब से कर सकें। जैसे सूखा सहने वाली फसलें लगाना, जब खेती सुरक्षित होगी तो हमें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी और हमारे पोषण पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
0: यानी ये योजना सीधे सीधे हमारे खाने पीने और पौष्टिकता पर असर डालती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर खेती प्रभावित होती है तो खाना कम और महंगा हो जाता है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
0: बिल्कुल, अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में भी कुछ बताइए।
1: हाँ, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और शायद मेरे श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। आज मैं और मेरे साथी आज आपको उन्हीं सब बातों के बारे में बताने के लिए उपस्थित हैं कि आप छोटी छोटी स्वास्थ्य, पोषण और जलवायु से जुड़ी हुई बातों को जान सकें। हाँ, तो मैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना चाहूँगी कि ये योजना खाने की सुरक्षा को जलवायु संकट में मजबूत बनाने के लिए है। इसमें खेती में फसलों में विविधता जैसे जोखिम से निपटने के उपाय शामिल हैं। इस तरह से लोग हमेशा पोषण युक्त भोजन पा सकें, खास तौर पर जब मौसम बिगड़ता है।
0: बिल्कुल, लेकिन हमारे खान पान का क्या संबंध खरीफ के वातावरण या पर्यावरण से है?
1: हाँ, क्यों नहीं, हमारे खान पान का संबंध वातावरण या पर्यावरण से बिल्कुल है और बहुत गहरा है। ईट राइट इंडिया कैंपेन तो आपने सुने ही होंगे, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये हमें सही, स्वच्छ और टिकाऊ भोजन खाने की सलाह देता है, साथ ही भोजन को बर्बाद न करने और लोकल भोजन को प्राथमिकता देने की सीख भी देता है, जिससे पर्यावरण भी बचता है।
0: अच्छा भाभी, अब ये बताइएगा कि नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की क्या भूमिका है?
1: जी, ये फंड राज्यों को उनके स्थानीय स्तर पर जलवायु के अनुकूल परियोजनाएं करने में मदद करता है, जैसे बेहतर खेती के तरीके जो हमारे पोषण को सुरक्षित रखें और जो इससे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वे आगे बढ़ सकें।
0: अच्छा भाभी, भारत बहु सांस्कृतिक देश है, पर यहाँ पर बहुत सारे मिथक प्रचलित है, खासकर जलवायु परिवर्तन और पोषण को लेकर। सबसे पहला मिथक जो मैंने सुना है कि जलवायु परिवर्तन तो दूर की या भविष्य की समस्या है। हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या ऐसा है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ी भूल है। भारत के कई हिस्से में आज भी हम गर्मी के बढ़ते तापमान, असमान बारिश और बाढ़ जैसी घटनाएं देख रहे हैं। ये सीधे फसलों की पैदावार और हमारे पोषण पर असर डालती हैं। तो जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बात नहीं, ये समस्या आज ही चल रही है।
0: बहुत सही कहा आपने। अगला मिथक ये है कि हमारे पारंपरिक भोजन और खेती जलवायु से प्रभावित नहीं होती।
1: हाँ, लोग ऐसा सोचते जरूर हैं कि पुराने तरीके की खेती सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई तो यह है भैया कि बढ़ते तापमान और जलवायु की अनियमितता से गेहूं, चावल और दालों की पैदावार लगातार कम हो रही है और उनके पोषण स्तर में भी गिरावट दिख रही है, खासकर उन इलाकों में जहां संसाधन कम है। यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है।
0: फिर क्या अधिकांश लोग ये भी गलत सोचते हैं कि अधिक पैदावार का मतलब बेहतर पोषण होता है?
1: ये तो माया जाल है। आज की खेती में ज्यादातर रासायनिक उर्वरकों के कारण फसलें बड़ी तो होती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता कम होती जा रही है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं। नतीजा यह है कि हम ज्यादा खाने के बावजूद भी पोषण से वंचित हैं।
0: फिर कुछ लोगों की ये धारणा है कि मांसाहारी भोजन ही पौष्टिक होता है।
1: भारत में कुछ लोग तो यही मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि विविध और संतुलित शाकाहारी भोजन पूरी तरह से स्वस्थ और पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। फल, सब्जियां, स्थानीय फसलें हमें अच्छा पोषण देती हैं।
0: जलवायु परिवर्तन और पोषण के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होने का वादा भी सुनने को मिलता है।
1: देखो भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। जलवायु परिवर्तन से खाद्यान्नों की पैदावार कम होती है, दाम बढ़ते हैं, पोषक तत्वों की कमी भी बढ़ती है। ये सब मिलकर खाद्य सुरक्षा और पोषण संकट के जड़ बन गए हैं।
0: भावी जैविक खेती और पारंपरिक खेती को लेकर भी कई गलत फहमियां हैं।
1: देखो लोगों को गलत फहमियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन अपने श्रोताओं को जागरूक करना, समुदाय के लोगों को सही और तथ्यपूर्वक जानकारी पहुँचाना ही हमारा कार्य है। आज हम इस स्टूडियो में अपने श्रोताओं को वही जानकारी देने के लिए एकत्र हुए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैविक खेती से उपज कम होती है, इसलिए वह टिकाऊ नहीं, लेकिन ये तरीका मिट्टी बचाता है, पर्यावरण को संरक्षित करता है और पौष्टिकता बढ़ाने में भी मददगार है। टिकाऊ खेती ही हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार की कुंजी है।
0: भाभी, आपकी बातें सुनकर साफ हो गया कि जलवायु परिवर्तन और पोषण एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं, और जो मिथक हैं वे हमें सही दिशा में सोचने से रोकते हैं।
1: आखिर आपको बात समझ में आ ही गई। मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को भी समझ में आ गई होगी। इस समय हमें कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला के अंतर्गत जलवायु और पोषण के विषय में गंभीर बात कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक जागृति पहुंचे, लोग अवेयर हों और पोषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में सभी छोटी से बड़ी जानकारी जान सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें सही जानकारी फैलानी होगी ताकि हम सब मिलकर टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य बना सकें।
0: टीकन भाभी जी, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें समझ आ गया कि कैसे हमारे पोषण और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई एक दूसरे से जुड़ी है और सरकार इसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। तो टिकन भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, आज हमने जाना कि पोषण और जलवायु का रिश्ता कितना गहरा है, और ये भी कि अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेहतर भविष्य छोड़ सकते हैं। तो चलिए, इस बार पोषण माह में आप भी एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। आज की चर्चा यही खत्म होती है, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

कर्म से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं, तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊं। मैं चाहती हूं।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको, हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुमो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। किसान मित्रों, हम आपसे बार बार कहते हैं कि खेती के साथ साथ अगर आप कोई अन्य काम करते हैं तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनती है। जब आप एक ही काम पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब उस काम में हमको घाटा हो जाता है तो फिर संभल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप खेती के साथ साथ पशुपालन करें, मुर्गी पालन करें, मत्स्य पालन कर सकते हैं, या आप बर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आप खेती के साथ साथ कर सकते हैं ताकि जब कभी आपको खेती में कोई नुकसान हो, कोई घाटा हो, तो उसकी भरपाई दूसरे काम से हो जाए और आपका जो काम है वो प्रभावित ना रहे, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी रहे। तो आपको अन्य काम भी करने चाहिए खेती के साथ साथ। और जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है कि सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चला रही है और ये जो सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, जो ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 90% तक इन दवाइयों की कीमत वो कम होती है और इन दवाइयों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इस योजना का उद्देश्य जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनके मेडिकल खर्चों के बोझ को कम करना और हेल्थ केयर में पारदर्शिता, गुणवत्ता और किफायत में सुधार करना है। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराना है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सके। इसके अलावा जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, कई लोग मान लेते हैं कि महंगी दवाइयां बेहतर होती हैं, इसीलिए इस योजना का लक्ष्य है कि लक्षित जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनता को शिक्षित करना और इस गलत धारणा को दूर करना। अब वो बात आती है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो इसमें रोजगार की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं। सरकार इस योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रही है और ये पहल स्वरोजगार को बढ़ावा देती है और उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। अब बात आती है कि हमारा कोई भी युवा साथी अगर जन औषधि स्टोर खोलना चाहता है तो क्या उसके लिए योग्यता है, कैसे वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये सब बातें हम आपको बताएंगे एक रागनी के बाद। तो आइए सुनते हैं ज्ञानेंद्र सरधाना से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये रागनी, और रागनी से पहले हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की। और खास करके हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं, खेती वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि खेती के साथ साथ आप अपना कोई स्वरोजगार भी कीजिएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में भी स्वरोजगार की बात कही गई है कि किस तरह से हमारे जो युवा साथी हैं वो अपना जन औषधि केंद्र खोल करके स्वरोजगार हासिल कर सकते हैं। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करें, क्या योग्यता है, तो आपको बताते हैं। देश में पर्याप्त कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार युवाओं को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने और विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने की अनुमति देती है। तो हमारे वो युवा साथी जिन्होंने बी फार्मा या डी फार्मा कर रखा है, उनके पास डिग्री है, तो वो अपना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जन औषधि स्टोर खोल सकते हैं। इसके अलावा जो कोई अपना एनजीओ चलाते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं तो वो भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये उपदेश। किसान मित्रों, भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन चला रही है। इस मिशन का उद्देश्य है कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। किसान मित्रों, वर्तमान समय में भारत अपनी खाद्य तेल की आवश्यकताओं का लगभग 57% आयात करता है। ऐसे में इस मिशन का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में पाम तेल मिशन के साथ आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को 57% से घटाकर 28% तक लाना है। और साथ ही इस मिशन के अंतर्गत उच्च उपज वाले तेल सामग्री वाले बीज किस्मों को अपनाने को बढ़ावा देना, चावल की परति भूमि में खेती का विस्तार करना और अंतर फसल को बढ़ावा देना शामिल है। इस मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिशन बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची साथी पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन 5 वर्षीय रोलिंग बीज योजना शुरू की जा रही है। ये राज्यों को सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO और सरकारी या निजी बीज निगमों सहित बीज उत्पादक एजेंसियों को साथ लाने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा 347 जिलों में 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला क्लस्टर विकसित किए जाएंगे जो सालाना 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करेंगे। इन क्लस्टरों का प्रबंधन FPO, सरकारी समितियों और सार्वजनिक या निजी संस्थाओं जैसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा किया जाएगा। इन क्लस्टरों में आप किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण और मौसम एवं कीट प्रबंधन पर सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ये मिशन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के माध्यम से तेलों के लिए अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत जीनोम एडिटिंग जैसी अत्याधुनिक वैश्विक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा नवाचार एवं तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और तिलहन की खेती के तहत अधिक क्षेत्रों को लाने पर विचार किया जा रहा है। किसान मित्रों, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन घरेलू तिलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा, जिससे आयात में कमी आने के साथ ही आप किसानों की आय में वृद्धि होगी और विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी होगा। इस मिशन से कम जल के उपयोग, बेहतर मृदा स्वास्थ्य और परती क्षेत्रों के उपयोग से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होंगे। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
0: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बता दें। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: दरोगा जी का आना हमारे घर पे कैसे हुआ, और फिर तो रुकया नहीं गया और सवाल करना शुरू कर दिया। क्यों दरोगा जी?
1: कहिए याद राम जी।
0: मैं इस भ्रम में हूँ, इस संशय में हूँ।
1: हाँ,
0: तुम्हारा आखिर हमारे घर पे आना क्यों हुआ, कारण बता।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
1: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
0: केवल माँ का दूध
1: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
0: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
1: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हेलो
1: हेलो
0: बेला,
1: ओ माय गॉड, तुमने मेरी 5 साल बाद भी आवाज पहचान ली।
0: अरे कहाँ से बोल रही हो, कहाँ थी इतने आवाज, कहाँ थी इतने साल, मेरी याद नहीं आई तुम्हें?
1: अरे अरे, इतने सारे सवाल।
0: सॉरी यार, पता नहीं क्यों मैं इतनी एक्साइट हो गई। तुम्हारा 5 साल से कुछ पता नहीं।
1: हाँ हाँ, जानती हूँ, पर इंतजार खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारे शहर आ गई हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई है।
0: सच? इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। अच्छा ये बता, मेरा नंबर कहाँ से मिला?
1: अरे विदेश से आने के बाद सीधा गांव गई थी, और तुम्हारे घर भी तो गई थी। तुम्हारे भाई से तुम्हारा नंबर लिया है, और उन्हें मैंने मना किया है तुम्हें बताने के लिए। तुम्हें सरप्राइज जो देना था।
0: अरे ये बताओ, कब मिल रही हो?
1: अभी
0: अभी
1: अभी।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि तुम्हारे भाई से एड्रेस भी ले लिया है मैंने। अब जल्दी से दरवाजा खोलो।
0: ओह डियर, कहाँ चली गई थी तुम? पता है कितना मिस किया है मैंने तुम्हें इन सालों में।
1: अरे बताती हूँ ना, पहले तू मुझे छोड़ तो सही।
0: अरे मैं भी पागल हूँ, चल तू पहले आराम से बैठ जा। ये ले पानी ले, और ये बता क्या लेगी, चाय या कॉफी?
1: मैंने तेरे हाथ की कॉफी को बहुत मिस किया है, तो आज पिला दे।
0: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ले गर्मा गर्म कॉफी पी।
1: थैंक यू यार। और बता कैसी है, खुश है ना शादी से?
0: हाँ खुश हूँ मैं।
1: और कैसे हैं हमारे जीजा जी, राकेश जी?
0: वो भी अच्छे हैं।
1: वैसे तुम्हारा घर देखकर तो अच्छा ही लग रहा है, और तुम्हारे भाई ने भी बताया था कि तुम बहुत खुश हो। मगर
0: क्या?
1: माय डियर, तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैं एक PhD हूँ।
0: हाँ जानती हूँ।
1: तो तुम मुझे सच सच बता कि तुम्हारे मुंह और माथे पर कैसे चोट के निशान हैं? ये मत कहना कि पांव फिसल गया।
0: बेला, तुमसे मैंने कभी कोई बात छुपाई है क्या? और एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ।
1: अच्छा चल अब पूरी बात बता।
0: बेला, मेरी शादी को 3 वर्ष हो चुके हैं। शुरू शुरू में तो सब अच्छा ही था, और सच पूछो तो अभी भी लगभग सब ठीक है। राजेश एक अच्छे पति हैं, अच्छा कमाते हैं, मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, और मुझे पूरी आजादी भी दी है उन्होंने। लेकिन पिछले 6 महीनों से उनमें कुछ बदलाव सा आ गया है।
1: बदलाव? कैसा बदलाव?
0: देखो बेला, पति पत्नी के झगड़े किस घर में नहीं होते, हमारे भी होते हैं, लेकिन पहले हम आपस में सब सुलझा लिया करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजेश हाथ उठाने लग पड़े हैं। हालांकि बाद में शर्मिंदा भी होते हैं, माफी भी मांगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हरकत कर बैठते हैं।
1: और तुम चुपचाप सह लेती हो?
0: सहना तो नहीं चाहती, पर समझ में नहीं आता क्या करूं।
1: इसमें समझना क्या है? इट इज नॉट जस्ट एक्सेप्टेबल, एज सिंपल एज दैट।
0: हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ी दुविधा में हूँ।
1: कैसी दुविधा अनिता?
0: चॉइस क्या है मेरे पास?
1: अगर तुम्हारी यही अप्रोच है तो सच में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इरादा पक्का हो तो अनेकों चॉइस हैं।
0: मैं नहीं चाहती कि घर की बात बाहर जाए, हालांकि मैं जानती हूँ कानून काफी सख्त है।
1: मैंने अपने वर्षों के अनुभव से ना जाने कितने केसेस देखे हैं, और उनके आधार पर तुम्हें बता रही हूँ कि इस बात को हल्के में मत लो।
0: मुझे लगता है कि सब धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा बेला।
1: नहीं अनीता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बार हाथ खुल जाए तो फिर नहीं रुकता, और वो बढ़ता ही रहता है।
0: लेकिन बेला, अब थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है ना?
1: नहीं अनीता, मैं तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
0: क्यों?
1: देखो अनीता, घरेलू हिंसा के दुर्गामी परिणाम काफी घातक होते हैं।
0: कैसे?
1: सबसे पहले तो धीरे धीरे उसके लिए एक आम बात हो जाएगी, और शारीरिक यातना के साथ साथ इससे स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं।
0: जैसे कि?
1: कई तरह की गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, गर्भपात भी हो जाता है।
0: अच्छा?
1: और शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी इसके घातक परिणाम होते हैं अनीता, और इस तरह के केसेस में डिप्रेशन में जाना आम बात हो जाती है।
0: हाँ सो तो है।
1: पर एक बात और सुन लो, और सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? इंसान टूट जाता है, आत्मविश्वास तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, हीन भावना में स्त्री ग्रस्त हो जाती है अनीता।
0: हाँ, इतना सब तो मैंने सोचा ही नहीं बेला।
1: और अभी तो तुमने फैमिली तक शुरू नहीं की है। जानती हो, बच्चों पर इस बात का बहुत असर पड़ता है। जो बच्चे इस माहौल में बड़े होते हैं, उनमें अनेक तरह के डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं।
0: हाँ बेला, बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर मैं सच में नहीं चाहती कि मामला घर से बाहर जाए।
1: मैं जानती हूँ कि ये मामला संवेदनशील है। राजेश को रोकना भी है और उसके अहम को भी कभी ठेस नहीं पहुँचानी है, और शादी को भी बचाए रखना है।
0: एग्जैक्टली, तो क्या सजेस्ट करती हूँ?
1: देखो, मैंने अनगिनत ऐसे केस हैंडल किए हैं। काफी केस केवल काउंसलिंग और समझदारी से सुलझ जाते हैं और बात घर में ही रह जाती है। लेकिन ये कि भगवान ना करे कि अगर समझदारी और सूझबूझ से मामला नहीं सुलझा तो कानून का भी सहारा लेना पड़ता है।
0: तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए।
1: नहीं अनीता, क्या करना है कि तुम्हें तय करना है। हाँ, कैसे करना है कि मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम्हारी पूरी मदद करूंगी।
0: पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ।
1: हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। जिंदगी भर घुट घुट कर जीने से बेहतर है एक बार तुम हिम्मत जुटा लो।
0: तुम मेरा साथ दोगी ना?
1: अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ।
0: मैंने हमेशा बचपन से तुम्हारी बात मानी है बेला, और आज तो मामला मेरी भलाई का है। ठीक है, ये लड़ाई भी लड़ते हैं, बताओ क्या करना है।
1: सबसे पहले तो संकल्प।
0: मतलब?
1: सबसे पहले तुम्हें संकल्प लेना होगा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलना है।
0: ठीक है बेला, ये मेरा वादा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब बताओ मुझे करना क्या है।
1: तो सुनो,

0: समझ गई ना?
1: हाँ बिल्कुल समझ गई।
0: ठीक है अनीता, तो अब मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड।
2: अनीता, अनीता मैं आ गया।
1: अरे आ गए आप, आज जल्दी आ गए, कैसे?
2: हाँ बस जल्दी फ्री हो गया तो सोचा साथ ही चाय पीते हैं आज, इसलिए जल्दी आ गया।
1: आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय बनाती हूँ, लीजिए चाय पीजिए।
2: अनीता एक बात कहूँ?
1: जी कहिए।
2: दरअसल मैं जानबूझकर जल्दी आया हूँ आज।
1: क्यों?
2: दरअसल मैं कल रात की हरकत से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था।
1: ये तो आप हर बार कहते हैं, पर बार बार वही करते हैं।
2: नहीं नहीं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा अनीता।
1: नहीं राजेश, ये फिर होगा और बार बार होगा। जब तक आप शर्मिंदा की बजाय इसके कारणों पर गौर नहीं करेंगे तब तक।
2: क्या मतलब?
1: आपने कभी गौर किया है कि आपका हाथ तभी उठता है जब आपने पी होती है?
2: हाँ हाँ हाँ शायद, लेकिन ड्रिंक तो मैं सालों से कर रहा हूँ, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था।
1: एग्जैक्टली।
2: तो फिर
1: 6 महीने पहले तक आपके ड्रिंक्स पार्टनर कौन थे? आकाश भाई साहब, आपने देखा कि वो अपनी पत्नी को कितनी इज्जत देते हैं, हाथ उठाना तो दूर कभी डांटते तक नहीं है, और अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखते हैं।
2: हाँ लेकिन क्यों? हाँ लेकिन।
1: दूसरा आपके दोस्त जिनके साथ आप ड्रिंक लेते थे, अजय भाई साहब, ट्रूली जेंटलमैन।
2: कहना क्या चाहती हो?
1: राजेश संगत का असर होता है, उन दिनों आपका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था। 2.5 साल से हमारे अनेकों झगड़े हुए, पर आपने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, और जब से आपने राहुल और विनय की संगत पकड़ी है आपके व्यवहार में लगातार बदलाव हो रहा है।
2: शट अप, मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता।
1: क्यों नहीं सुनना चाहते?
2: मेरे डूबते हुए बिजनेस को बचाने में कितना हाथ है, खबरदार मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तो।
1: ठीक है, खाना बना हुआ है, आप खा लीजिए, मैं सोने जा रही हूँ।
2: और तुम्हारा खाना?
1: आपकी डांट से पेट भर गया है, और अगर भूख लगी तो कह दूंगी हाथ उठा देना, आपकी मार से भूख खत्म हो जाएगी।
2: ओ फनीता, प्लीज समझो ना यार।
1: मैं तो समझ ही रही हूँ, अच्छा होता कि आप भी थोड़ा समझ लेते।
2: आखिर चाहती क्या हो तुम?
1: अभी आप सो जाइए, कल बात करते हैं इस बारे में। गुड नाइट।

0: गुड मॉर्निंग, उठो और चाय पी लो अनीता।
1: अरे आज आपने चाय बनाई है?
0: हाँ, उठो चाय पियो और लो बिस्कुट भी खा लो। पगली कहीं की कल रात को भूखी ही सो गई थी।
1: चाय तो काफी अच्छी बनी है।
0: अच्छा ये बताओ कल रात को तुम क्या कह रही थी?
1: देखो राजेश, ये जरूरी नहीं है कि हम हर बात पे आर्ग्यू करें, लेकिन दो मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों की तरह हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर सकते हैं ना। जहाँ डिफरेंसेस हो वहाँ डिस्कशन तो कर सकते हैं ना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम।
1: तो सबसे पहले ये बताओ, बात बात पर हाथ उठाना कहाँ की समझदारी है?
0: मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अनीता।
1: ये तो आप हर बार कहते हैं, लेकिन होता क्या है, फिर दोबारा उठ जाता है। देखो राजेश, मैंने इस बारे में काफी सोच विचार किया है। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी काफी इज्जत करती हूँ, और आप एक अच्छे इंसान हैं, मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये हक किसी को नहीं है कि कोई किसी पर हाथ उठाए।
0: हाँ हाँ मानता हूँ।
1: आपको शायद बुरा लगे और शायद आपकी मर्दानगी को भी ठेस पहुँचे, पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाएं।
0: वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा।
1: ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा कुछ फिर से हुआ तो परिणाम के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे।
0: अनीता मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुम अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे इन दोस्तों से क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है तुम्हें?
1: मुझे कोई एतराज नहीं है आपके दोस्तों से, पर मुझे ये कहना है कि इन्होंने हमारे पर कोई एहसान नहीं किया है। ये दोनों सफल बिजनेसमैन हैं और इन्होंने आपके बिजनेस पर पैसा लगाया है।
0: हाँ लेकिन हम डूबने से तो बच गए ना।
1: ये सही है, ये डील सही समय हो गई, लेकिन इन्होंने पैसा हमें बचाने के लिए नहीं लगाया, इन्होंने हिस्सेदारी भी ली है और ब्याज भी ले रहे हैं। इन्हें कुछ दिखा होगा तुम्हारे बिजनेस में, अगर इन्हें जरा सा भी अंदेशा होता तो ये पैसा नहीं लगाते हमारे बिजनेस में।
0: हाँ बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें इन लोगों से एतराज क्या है?
1: मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा केवल इतना कहना है कि फिलहाल वे आपके बिजनेस एसोसिएट हैं, वहाँ तक ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वे आपके दोस्त बन गए, और ना आपको उनके एहसान तले दबने की जरूरत है। बिजनेस रिलेशन है और ये बराबरी का होना चाहिए।
0: हाँ मैं उनके साथ उठ बैठ लेता हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है?
1: कोई हर्ज नहीं है, अगर ये आपके घर परिवार और अन्य रिश्तों पर असर नहीं डाले तब।
0: क्या मतलब?
1: थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना, क्या आकाश भैया और अजय भैया से आपका मिलना जुलना बंद नहीं हो गया है क्या? कितना पुराना रिश्ता है उनसे और आप भूल गए हैं उन्हें। वो लोग हर सुख दुख हमारे काम आए, आपका नए लोगों के साथ उठना बैठना हमारे घर की सुख शांति को भंग कर रहा है।
0: बात तो तुम ठीक कह रही हो।
1: देखो इंसान के पास जो होता है वही वह दूसरों को दे सकता है।
0: मतलब?
1: देखो आकाश भैया और अजय भैया का पारिवारिक जीवन कितना सुखी है और वही वाइब्रेशन वे आगे भी पास करते हैं। लेकिन सुना है आपके नए पार्टनर्स का दाम्पत्य जीवन कुछ ठीक ठाक नहीं है, एक की पत्नी उसको छोड़ के चली गई है और दूसरे की पत्नी राम जाने कभी दिखी नहीं। सुना है उनका परिवार दूसरे शहर में रहता है।
0: मैं जानता था तुम समझदार तो हो, लेकिन तुम इतनी ज्यादा समझदार हो ये नहीं पता था। मैं ये नहीं जानता था आज से परिस्थितियाँ बदलेंगी। कल संडे है ना, आकाश और अजय की पत्नी को फोन करो तुम और उन्हें कल डिनर पर बुलाओ।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा कुन्नू कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार

0: तैयार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिविजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिविजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिविजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिविजन बताते थे और उस शॉर्ट डिविजन से गाना निकलता था।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
1: नमस्कार, मैं नीलकंठ कुमार, संकाय सदस्य CIET NCERT हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। यह कविता

0: कक्षा छठी की किताब वसंत भाग एक से संबंधित है। वसंत भाग एक की यह पहली ही कविता है। चिड़िया का नाम सुनते ही हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि फुदक फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह पर, एक टहनी से दूसरे टहनी की ओर वो जा रही हो, भाग रही हो। तो आज इस मजेदार कविता के बारे में हम सब जानेंगे और समझेंगे। थोड़ी सी बात इस कविता के कवि के बारे में भी जान लेना बेहतर होगा। कवि केदारनाथ अग्रवाल का बचपन खेत खलिहानों, नदियों, वनों, उपवनों, तालाबों और जानवरों के पीछे दौड़ते भागते हुए बीता था। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा का पूरा बचपन प्रकृति के बीच बीता, चिड़ियों को देखते हुए, पशुओं को देखते हुए। और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे उनको प्रकृति से मानो प्यार हो गया और इसीलिए उनके अंदर की चिड़िया इस कविता में अव्यक्त हुई है शब्दों के माध्यम से। दरअसल यह चिड़िया जो आपको कविता में दिखाई पड़ती है वो कहीं ना कहीं से कवि के मन के अंदर बैठी हुई चिड़िया भी है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो चिड़िया है कैसी और वो चिड़िया हमसे कैसे जुड़ती है। इस कविता को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि उतार चढ़ाव के साथ हम उस कविता को पढ़ें, उसका पाठ करें। अगर आप उचित लय के अनुसार अर्थ को समझते हुए, भाव को समझते हुए कविता का पाठ कर लेते हैं तो समझिए कि आधे से अधिक कविता का अर्थ आपके समझ में आ गया है। तो आप भी जब मैं पाठ कर रहा हूँगा तो मेरे साथ साथ पाठ करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ साथ भी और मेरे बाद भी। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो विद्यार्थियों, आपने वह चिड़िया जो कविता का एक पाठ सुन लिया। कविता को पढ़ते हुए कुछ न कुछ चिड़िया के बारे में जो बातें हुई हैं वो आपके समझ में भी आई ही होंगी। तो जिन बातों को आपने नोटिस किया, जिन बातों की ओर आपने ध्यान दिया, उसके आधार पर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आप जरा सोचिए अपने मन में कि बहुत सरल और सहज भाषा में लिखी गई केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता में चिड़िया की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो मेरे समझ में तो बात ये आई कि चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को नदी से भी प्यार है और चिड़िया को विजन से भी प्यार है। और आप कह सकते हैं कि चिड़िया को दूध भरे जुंडी के दाने से भी प्यार है। तो चिड़िया को बहुत सारी चीज़ों से प्यार है। आप इस कविता को पुनः ध्यान से पढ़ते हुए ये देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि इस कविता के आधार पर चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है और चिड़िया की विशेषताएं क्या क्या बताई गई हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि चिड़िया नीले पंखों वाली है, चिड़िया साहसी भी है और अरे चिड़िया तो संतोषी भी है क्योंकि दूध भरे जुंडी के दाने को खाकर वो खुश भी होती है, देखती भी है, इधर उधर उड़ती भी है और प्रसन्न रहती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि चिड़िया संतोषी भी है क्योंकि उसे जो मिल रहा है वो उसे ही खाकर प्रसन्न है। तो चिड़िया के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको एक कविता से मिल रही है, और अगर आपने इन सारी बातों की ओर ध्यान दिया है तो अब हम कविता के अर्थ की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। आपने पाठ सुन लिया, पाठ के आधार पर यह भी जान लिया कि चिड़िया की विशेषताएं क्या क्या हैं, चिड़िया किन चीज़ों को खाकर खुश रहती है। तो आइए इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनको कविता से जोड़ते हुए कविता के अर्थ को आगे बढ़ाते हैं, उसके भाव को विस्तार देते हैं, और साथ ही हम अपनी समझ को भी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कविता का अर्थ करने के लिए पुनः हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप भी कविता को देखिए और मेरे साथ साथ इस कविता का अर्थ और भाव विस्तार करने का प्रयास कीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो चिड़िया अपने बारे में खुद ही कह रही है। आप कह लें कि कवि एक तरह से चिड़िया बनकर अपनी बात कर रहे हैं। तो चिड़िया के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसी चिड़िया हूँ जिसके पंख नीले हैं, और फिर वह चिड़िया कहती है कि मैं चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से और रस से खा लेती हूँ। हमारी और आपकी तरह उनके पास हाथ या पांव नहीं होते, तो वो कैसे खाएंगे? चोंच मारकर। अब आप अर्थ लगाने का प्रयास कीजिए आगे पीछे के संदर्भ को देखते हुए, आगे पीछे जो कविता में बातें की गई हैं कि दूध भरे जुंडी का क्या अर्थ हो सकता है। जुंडी का मतलब है किसी दाना की ओर, किसी अनाज की ओर संकेत किया गया है। दूध भरे हुए जुंडी के दाने, आपने गेहूं की बाली देखी होगी। अगर आपने कभी खेत खलिहानों को देखा हो तो आपने देखा होगा कि गेहूं में बाली लगती है, तो उस बाली की ओर ही संकेत किया गया है। और दूध भरे जुंडी, जुंडी का अर्थ ज्वार से है। तो ज्वार के दाने चिड़िया खा रही है, और ये भी बताया गया है कि वो ज्वार के दाने कैसे हैं। तो वो दूध से भरे हुए हैं। दूध से भरे हुए दाने कब होते हैं? जब वो पके हुए नहीं होते हैं, थोड़े से कच्चे होते हैं। और उसको चिड़िया कैसे खाती है? रुचि से, रस से वो खा लेती है। जरा आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप वैसी चिड़िया हो, या अपने आप को आप चिड़िया मानते हुए सोचिए कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप कितनी रुचि से और रस से खा लेते हैं। वह छोटी, अब चिड़िया अपने बारे में ही कह रही है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब कि मैं संतोषी हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की इच्छा नहीं है कि मैं यह भी खा लूँ, मैं वह भी खा लूँ। इसलिए चिड़िया अपने बारे में कहती है कि वह छोटी जरूर है लेकिन संतोषी भी है। तो चिड़िया छोटी है, चिड़िया नीले पंखों वाली है, और चिड़िया अपने बारे में खुद ही कह रही है कि मैं संतोषी भी हूँ। अब चिड़िया आखिर में कह रही है जो मैं आपसे पूछ रहा था इस कविता को पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी, कि चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया खुद ही कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मतलब चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने को खा रही है, और जिसके बाद वो कह रही है कि वो संतोषी भी है, और नीले पंखों वाली वही चिड़िया अंत में कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो ऐसी है वो चिड़िया। तो चिड़िया अपनी बात कह रही है, और चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल भी अपनी बात कह रहे हैं। कहीं न कहीं केदारनाथ अग्रवाल को भी अन्न से प्यार है। अब हम आगे की कुछ पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। पुनः चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब आग शुरू की कुछ पंक्तियों को ध्यान से देखिए और उन पंक्तियों को देखते हुए अनुमान करने का प्रयास कीजिए, अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए कि एक अपरिचित सा जो शब्द विजन के रूप में आपको दिख रहा है, उस विजन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि आप इसके अर्थ का अनुमान अवश्य कर लेंगे। अगर आप बूढ़े वन बाबा को समझते हैं तो बाबा शब्द का उपयोग कई जगहों पर पुरखों के लिए किया जाता है। पुरखों से आशय यह है कि एक या दो पीढ़ी पहले के लोग, और कई क्षेत्रों में बाबा शब्द दादा के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। वन बाबा मतलब वन की कल्पना दादा के रूप में की गई है। मुझे लगता है कि अब तक आपने विजन शब्द के अर्थ का अनुमान अवश्य कर लिया होगा। विजन शब्द का अर्थ ये है, ऐसी जगह जहां पर जन ना हो, ऐसी जगह जहां पर कोई रहता ना हो, उसे विजन कहते हैं, विजन या निर्जन जगह। तो विजन शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसी जगह जो निर्जन है, जहां कोई रहता ना हो, जहां कोई आता जाता ना हो। तो निश्चित रूप से जहां जंगल होता है वहां अधिकांशतः कोई आता जाता नहीं है। हाँ, पशु पक्षी और चिड़िया वहां पर अवश्य आपको मिलेंगे। तो आइए अब पुनः देखते हैं कि चिड़िया क्या कह रही है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो चिड़िया कैसे गाती है? कंठ खोलकर, मतलब कंठ खोलकर गाने का मतलब ये हुआ कि पूरे मन से वो गाती है, पूरे सुर में वो गाती है। तो चिड़िया कह रही है कि कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। अब यहाँ वन बाबा को वन जंगल, जिसकी कल्पना दादा के रूप में की गई है, पुरखों के रूप में की गई है, और जिन्हें बूढ़ा भी बताया गया है, उस वन बाबा की खातिर यह चिड़िया कंठ खोलकर गाती है। तो निश्चित रूप से उसे अपने बूढ़े वन बाबा से बहुत ही प्यार है। आगे की पंक्तियां बताती हैं कि आखिर वो चिड़िया कैसे गाती है। तो इसका जवाब इन पंक्तियों में दिया गया है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। अब रस उड़ेल कर गाने का मतलब क्या हुआ? कि चिड़िया ऐसे गाती है जैसे बिल्कुल प्रसन्नता से भरी हुई पूरे सुर में और मन में वो गा रही है। रस उड़ेल कर गाने से ये आशय है। और आगे फिर एक और विशेषता की ओर संकेत है चिड़िया की। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। अब फिर से चिड़िया कह रही है कि वह मुंह बोली है, मतलब अपने बूढ़े वन बाबा से मुंह लगी हुई है। वो उनके सामने कुछ भी बोल देती है और जो मन में आता है वो गाती है, वो बोलती है। इसीलिए चिड़िया कह रही है कि वह मुंह बोली हुई है, मुंह बोली चिड़िया है, मतलब यह है कि वो बूढ़े वन बाबा से मुंह लगी हुई है। बूढ़े वन बाबा की चिड़िया प्यारी भी है, प्रिय भी है। मुंह बोली कहने का आशय ही यह होता है कि कोई किसी का प्रिय हो तभी वो उससे बोल सकता है जो मन में आए। और मोहगोली कहने का मतलब ही यह है कि चिड़िया को वन बाबा से बहुत ही प्यार है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है विद्यार्थियों कि एक तो जंगल की कल्पना दादा के रूप में क्यों की गई है, बाबा के रूप में क्यों की गई है, पुरखे के रूप में क्यों की गई है, और उन्हें बूढ़ा भी क्यों कहा गया है। यह प्रयोग कवि ने जानबूझकर किया है, वो इसलिए क्योंकि चिड़िया की उम्र बहुत कम होती है और वन, उपवन, जंगल, पेड़ सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुराने होते हैं। तो यही कारण है कि चूंकि पेड़ बहुत पुराने होते हैं, जंगल बहुत पुराने होते हैं और चिड़िया की कई पीढ़ियां उस एक ही पेड़ पर पैदा लेती है, जैसे वो चिड़िया उसके माता पिता भी हो सकता है उसी पेड़ पर पैदा हुए हों, और उस चिड़िया के आगे आने वाले बच्चे भी हो सकता है, उसकी आगे की संतति, उसकी के संतानें भी उसी पेड़ पर पैदा हों। इसीलिए चिड़िया कहती है, चूंकि ये वन बाबा अनंत काल से चले आ रहे हैं, बहुत प्राचीन हैं, पुराने हैं, इसलिए और वहीं पर चिड़िया पली बढ़ी है, खेली कूदी है, इसलिए उस वन को अपना मानते हुए बूढ़े वन बाबा का संबोधन चिड़िया ने दिया है कि ये हमारे अपने तो हैं ही, हमारे परिवार के हिस्सा तो हैं ही, क्योंकि हम सब वहीं पले बढ़े हैं और साथ ही हमारे बाबा भी हैं। बाबा इसलिए हैं कि पुराने हैं, प्राचीन हैं, कई पीढ़ी से वो उनके साथ बने हुए हैं। और मुंह बोली भी चिड़िया इसीलिए है क्योंकि उसी पेड़ पर हो सकता है चिड़िया ने उड़ना सीखा हो, उसी पेड़ पर हो सकता है चिड़िया ने बोलना सीखा हो, उसी पेड़ के फल दाने फूल को खाते हुए हो सकता है चिड़िया बड़ी हुई हो। इसीलिए वो कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा के मुंह लगी हुई हूँ, मुंह बोली हूँ, तो इनके सामने मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे कोई लिहाज नहीं करना पड़ता है और जो मन में आता है मैं बोलती हूँ, वैसे ही जैसे आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से कुछ भी बोलते हैं दिल खोलकर, तो आप मुंह बोली हैं उनके लिए। अगर आप चिड़िया हैं तो अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता की आप मुंह बोली हैं। तो फिर से वापस आते हैं चिड़िया पर। तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा की प्यारी क्यों है, मुंह बोली क्यों है, आपने समझ लिया। आपने यह भी समझ लिया कि चिड़िया ने बूढ़े वन बाबा का संबोधन क्यों दिया है, जंगल को, वन को बाबा क्यों कहा है। और मजे की बात तो ये देखिए कि जंगल को एक तरह से उसने मनुष्य की तरह चित्रित कर दिया, इंसान बना दिया बाबा कहकर, बूढ़ा भी कहकर और बाबा भी कहकर। तो ये बहुत ही मजेदार प्रयोग इस कविता में है जो चिड़िया कह रही है और चिड़िया के माध्यम से कवि भी कह रहे हैं। कवि को भी वन उपवन से प्यार है, कवि को भी अन्न से प्यार है और कवि का बचपन खेत खलिहानों के बीच, वन उपवन के बीच, तालाब में तैरते हुए, पशु पक्षियों के पीछे भागते हुए बीता था। तो वह चिड़िया आप भी हो सकते हैं विद्यार्थियों, कवि तो हैं ही, और चिड़िया जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिस चिड़िया की विशेषता अब तक आप समझ चुके हैं कि वो नीले पंखों वाली है, वो संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है और अपने बूढ़े वन बाबा की वो मुंह बोली भी है, तो ऐसी ही चिड़िया की चर्चा इस कविता में अभी हो रही है। तो फिर से चिड़िया कह रही है कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और आखिर में वो कहती है कि ऐसे सुनसान निर्जन जगह पर जहां कोई आता जाता ना हो, जिसके लिए विजन शब्द का उपयोग किया गया है और विजन शब्द का अर्थ अभी आप सब ने कविता पढ़ते हुए अनुमान किया और जानकारी भी ली कि विजन किसे कहते हैं। तो चिड़िया कह रही है कि उस विजन से उसे बहुत ही प्यार है, विजन उसे प्रिय है, इसलिए कि वहाँ पर वो मुंह खोलकर गाती है, अपने वन बाबा से जो भी मन में आता है बातचीत करती है, और वहीं पर वो पली बढ़ी भी होगी, इसलिए वो विजन, वो निर्जन, वो शांत जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो एक प्रकार की शांति उसे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो चिड़िया की ये सारी बातें आपने जान ली, समझ ली कि चिड़िया के मन में क्या क्या चल रहा है, और आपके मन में भी चिड़िया के बहाने कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आपके मन की भी चिड़िया कूद कर बाहर निकल जाना चाह रही होगी, है ना? आप भी सोच रहे होंगे कि आपको चिड़िया की तरह क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, आप किसके मुंह बोले या मुंह बोली हैं, और आपको किन चीजों से प्यार है। तो चलिए अब हम आगे की कुछ पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस नीले पंखों वाली चिड़िया को, जो संतोषी भी है, जो मुंह बोली भी है, उसे और किन किन चीजों से प्यार है, और वो और क्या क्या चीजें करती हैं। आगे की पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो चोच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को नदी से भी प्यार है। अभी अलग अलग चीजों से चिड़िया के प्यार के बारे में आपने सुना, अब आखिर में चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्यों नदी से प्यार है? क्योंकि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, ऐसी नदी जो भरी हुई, चढ़ी नदी कहने का मतलब नदी पूरी तरह गति में हो, भरी हुई नदी हो, जिसमें बहुत सारा पानी हो, वैसी नदी के बारे में चिड़िया कह रही है कि चढ़ी नदी का दिल टटोलना, दिल टटोलना दिल व्यक्ति के मध्य में होता है, और इसी तरह नदी का दिल कहने का मतलब कि जहाँ सबसे तीव्र धार हो, जहाँ सबसे ज्यादा पानी हो, वहाँ जाकर जल का मोती अपने चोंच में भर लेती है, जल रूपी मोती चिड़िया के लिए वो जल, चूंकि चिड़िया प्यासी है तो जल उसके लिए मोती से कम नहीं है, इसीलिए चिड़िया कह रही है कि मैं अपने चोंच में जल का मोती भर लेती हूँ, वो भी भरी हुई नदी, चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर, और इसीलिए चिड़िया कहती है कि वह छोटी गर्भीली चिड़िया को अपने इस क्रियाकलाप पर, अपने इस बात पर कि वो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपने चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, इस बात से चिड़िया को बहुत फख्र है, गर्व है। तो इसीलिए चिड़िया कहती है कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कहने का मतलब यह कि चिड़िया साहसी भी है, इसीलिए कहती है कि मुझे गर्व है और मैं डरती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निडर हूँ। इसीलिए अंत में चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं साहस करके नदी का दिल टटोलती हूँ। इसमें चिड़िया को आनंद भी आता है और चिड़िया की प्यास भी बुझती है, चिड़िया को गर्व भी है साहसी होने का, और इसीलिए अंत में कहती है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ मुझे इस नदी से भी बहुत प्यार है। और चिड़िया के साथ साथ, जैसा कि मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ, कवि को भी कहीं ना कहीं नदी से प्यार है, और अपनी इन्हीं भावनाओं को, जिन चीज़ों से कवि को प्यार है, उसे कवि ने शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया है, और जो आपके सामने है कविता रूप में, वह चिड़िया जो। तो आपने इस कविता का अर्थ जान लिया, समझ लिया। अब आइए कुछ भाषा की भी बात करते हैं। आप इस कविता को जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते हुए चिड़िया की कई विशेषताओं की ओर आपका ध्यान गया होगा, जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया। तो ये चिड़िया छोटी है, चिड़िया नीले पंखों वाली है, चिड़िया संतोषी है, तो ये सारे शब्द चिड़िया की विशेषताओं की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो अलग से आपको विशेषण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस कविता में ही आपने जान लिया कि जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है चिड़िया के लिए वो सब विशेषण हैं। इसी तरह से चिड़िया को पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि चिड़िया शब्द संज्ञा है, और जब खुद के लिए चिड़िया मैं बोलती है तो वो सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो कविता पढ़ते हुए आप व्याकरण की बात भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब चिड़िया ये कहती है कि मैं रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, तो गाना क्रिया है, आप सब जानते हैं कि खाना गाना क्रिया है। अब वो कैसे गा रही है? रस उड़ेल कर गा रही है। तो गाने की विशेषता कौन बता रहा है? रस उड़ेलना। तो रस उड़ेल कर यहाँ क्रिया विशेषण की तरह उपयोग किया गया है। तो जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्रिया विशेषण। तो आपने क्रिया विशेषण को भी जान लिया कविता को पढ़ते हुए ही। तो मुझे लगता है इस कविता को पढ़ते समझते हुए आपके मन की चिड़िया अब तक बाहर आ गई होगी। कुछ अनुमान और कल्पना कीजिए और पढ़ते रहिए इस कविता को। हम अगली दफा फिर मिलेंगे किसी और पाठ के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले, हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
7: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को मां के सीने से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
2: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
1: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें होती हैं, हमारी बातें होती हैं, और हमारे आसपास क्या खास हो रहा होता है वो सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। वर्तमान समय को अगर हम देखें तो स्टार्टअप की बातें चारों तरफ है। स्टार्टअप एक आइडिया जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक ऐसा विचार जो आपको आगे लेकर जा सकता है। इस दिशा में, इस क्षेत्र में आप बहुत कुछ खास कर सकते हैं। जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की। अगर आपको एक सच्चा अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आपके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं और आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। जहन में सवाल आता है कि स्टार्टअप क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने एक एक्सपर्ट से चर्चा की है। जी हाँ, स्टार्टअप चौराहा में आज हमारे साथ खास

0: मेहमान जुड़ रहे हैं मिस्टर सोमल मुखर्जी, एन एक्सपर्ट इन मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, वर्किंग एज कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप कार्यरत हैं। दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड सर्टिफाइड एनएलपी कोच, वाइस प्रेसिडेंट संरक्षिका द वुमन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ सीआईएसएफ ग्रेटर नोएडा यूनिट, और इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी। और इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है शारदा लॉन्च पैड इन एसोसिएशन विद पैप्सवायर, द पॉलिसी एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ स्टार्टअप इन यूपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और ये प्रोग्राम प्रसारित कर रहा है सुरु शारदा 90.8 एफएम। आइए चलते हैं इस चर्चा की तरफ।
1: स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन या हिंदी में बोले तो नवाचार, उद्यमिता, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में हम लोग रोज ही सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं बहुत जगह पर, और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बहुत लोग इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ये श्रृंखला शुरू की है स्टार्टअप चर्चा के नाम से, जो शारदा यूनिवर्सिटी में शारदा लॉन्चपैड फेडरेशन और पॉलिटिक्स ओवर पॉलिसीज कंपनी की तरफ से जॉइंट एक इनिशिएटिव है। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड के अंदर आज हम यहां पर उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथियों के साथ। हमारे साथ हैं श्री सोमिल मुखर्जी, जो पीएसए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस से हैं, और मैडम श्रद्धा अवस्थी हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले सोमिल मुखर्जी जी से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस में और भारत सरकार के साथ वो किस तरह से जुड़े हुए हैं।
2: मैं आपको विस्तारित रूप में ये कहना चाहता हूँ कि साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है ये 1999 में एस्टैब्लिश हुई थी, इसकी जो संगठित हुई थी, और उस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम सर जी हमारे प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने पहला साइंटिफिक एडवाइजर का जो दौर था वो देश के पहले साइंटिफिक एडवाइजर थे। और जितना भी हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान की काम होती थी उस टाइम, चाहे वो न्यूक्लियर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो एयरोस्पेस में हो, उस टाइम पे हमें ये भी पता है कि पोखरण से की हमने की थी उस टाइम चर्चा, और इंडिया वॉज सक्सेसफुल ऑल्सो इन दैट। तो देर वॉज एन इवोल्यूशन हैपनिंग बिकॉज इंडिया वॉज इवॉल्विंग इन स्पेस। सो प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को उस टाइम हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी चीजों में एडवाइस की जरूरत थी फ्रॉम ऑल द scientists and researchers that are available in the country. So APJ Abdul Kalam led this initiative, and from then currently hum leadership hai abhi jo chautha hamare scientific advisor professor Jasood, wo Indian Institute of Science se aate hain aur wo khud hi semiconductor aur nanotechnology mein expert hai, royal fellow of physics ke member hai, plus unke paas kafi patents hai UK aur US se, unhone kafi Raman resonance ke upar heart pacemaker ko improve karne ki टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटीज को भी उन्होंने इंक्रीज किया करवाया है। तो अभी फिलहाल हम इनकी विजन्स के थ्रू अलाइंड है, और अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में 2-3 डिविजन्स हैं। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है जो कि सर खुद लीड करते हैं, उसके अंदर नेशनल तौर के मिशंस आते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्वांटम हो सकता है, AI ML हमेशा हमारी कंट्रीज को बढ़ावा दे रही है और हर एक स्पेस में उसकी यूटिलाइजेशन है AI ML में हमें देखने को मिलता है, और भी जैसे डीप ओशन मिशन हो गया, फिर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन हो गया, और फिर वन हेल्थ मिशन है, अग्नि है जो कि स्टार्टअप्स इनक्यूबेटर्स को हेल्प करता है, ऐसे मिशंस पे पीएसए ऑफिस काम करता है और लीड करता है। फिर एम्पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप भी है जो बेसिकली पॉलिसीज पे इंडस्ट्री की जो गैप्स है, जो लैक्यूनस है, उसको एड्रेस करने में लगे होते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को कैसे प्रॉपर तरीके से किया जाए लाइन मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करने के लिए। और तीसरा हमारा डिवीजन है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और लीड करती है डॉक्टर सपना पोटी जो IIT मद्रास के स्कॉलर हैं, एंड दिस डिवीजन बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस डिवीजन है इनका, इसका मकसद ये है कि हम इंडस्ट्री अकेडमिया एंगेजमेंट्स कराते हैं, फैसिलिटेशंस कराते हैं फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन द कंट्री एंड सीमलेस कोलैबोरेशन थ्रू प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड मंथन, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है तो ये सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है जितनी मेरी जानकारी में है, और जरूर ही जो हमारी भारत सरकार के जो मिशन है जैसे स्टार्टअप इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम अभी ड्रीम लेकर चल रहे हैं, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जरूर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस का रहता होगा इसके अंदर। मैडम श्रद्धा बस्सी, आपके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे साथ सुनो शारदा एफएम से बहुत से हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से भी बहुत से हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और इसको इसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप, जैसे मैं जानता हूँ इंडस्ट्री और अकेडमिया दोनों ही डायरेक्शन में आपने बहुत काम किया है, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए जानकारी दीजिए।
3: नमस्कार सभी लोगों को। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 17 साल का एक्सपीरियंस मेरा इंडस्ट्री और एकेडमिया में ज्यादा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा कनेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिली और बात करी, उनके जो आइडियाज थे वो कैसे अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। तो जो मैंने सोचा कि इसी फील्ड में ये लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे जा सकते हैं, इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बेटर क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, तो इसी में मैंने काफी काम किया है। प्लस मैं एक ट्रेनर भी हूँ और सीनियर कंसल्टेंट भी हूँ, लैंग्वा फिना ग्लोबल सर्विसेज कंपनी है, उसी में तो उसी में ही मैं एक हमारा एक प्रोग्राम चलता है जो कैंपस टू कॉर्पोरेट कनेक्ट, तो उसमें एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें जो एक पार्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया दिखाना चाहते हैं, नया डेवलप करना चाहते हैं, तो उनके लिए कि उनको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बाहर से तो हमें जितना मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा अंदर का मोटिवेशन कैसे डेवलप होगा। तो आइडियाज बहुत होते हैं बच्चों के पास, बट कैसे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें, कैसे आइडियाज को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए कुछ हम जो है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उस सपोर्ट और गाइडेंस में बहुत सारे चीजें हैं, मेंटरिंग है, कोचिंग है, तो डिफरेंट एरियाज हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बहुत जरूरत होती है, तो उसी फील्ड में हम उनको सपोर्ट देते हैं एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ कोच।
1: धन्यवाद। हम लोग स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आजकल ये बहुत पॉपुलर टर्म हो गई है, लेकिन अगर हम भारत का इतिहास देखें तो सदियों से जो भारत देश रहा है वो किसानों का और उद्यमियों का देश रहा है। कितना भी पुरानी हम सभ्यता में चले जाएं जो हमारे भारत के इतिहास के अंदर है, तो हमेशा से हम लोगों ने ये देखा है कि ज्यादातर लोग या तो किसान थे या खेती से जुड़े हुए थे या उन लोग किसी ना किसी तरह के रोजगार के अंदर थे। तो ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता हमारे एक इतिहास का, हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो डेफिनेटली उसी का इफेक्ट हम आजकल देख रहे हैं कि जब ये सपोर्ट हमें सरकार की तरफ से मिलना शुरू हुआ तो हमारी वो जो सभ्यता चली आ रही थी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो इनबिल्ट स्किल्स हैं, हमारी जो क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं एक उद्यमी जगत में जाने की, उद्यमी बनने की या किसी भी तरह के रोजगार को आगे बढ़ावा देने की, नए नए रोजगार शुरू करने की, तो वो फिर से कहीं ना कहीं वो जागरूक हो रही है हमारे अंदर और उन स्किल्स को हम डेवलप कर पा रहे हैं। और जहां पर और जरूरतें हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, तो आप लोग जिस इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि इससे इनिशिएटिव्स के साथ और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कमी लग रही है, कुछ सपोर्ट में दिक्कत उन्हें आ रही है, तो वो सारी दिक्कतें और वो सारी कमियां बहुत जल्दी पूरी होंगी। और ये जो मिशन हम लेकर चल रहे हैं स्टार्टअप इंडिया का और एक आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का, तो ये मिशन बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं जरूर पूरा होगा। तो हम इसके बारे में अभी और स्टार्टअप्स में उनको सपोर्ट करने के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आने के लिए किस तरह से पीएसए ऑफिस काम कर रहा है और क्या नए इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, इसके बारे में अभी हम और एक जानकारी लेंगे। इससे पहले एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप चर्चा के अंदर। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम के बारे में, और हमारे साथ हमारे जो अतिथि हैं सौमिल मुखर्जी जी और मैडम अवस्थी जी। तो हम आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा में, और सौमिल जी, मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस के अंदर बहुत से ऐसे विषय हैं जो स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, या जो इनोवेशंस नए नए लोग लेकर आ रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें सिस्टम्स नए बनाए जा रहे हैं, नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में और जानकारी दीजिए कि स्टार्टअप्स और इनोवेशन और रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो युवा लोग हैं या हमारे जो और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ अपना जॉब में या कहीं पर काम करने के बाद कुछ उनके पास नए थॉट्स, नए आइडियाज आते हैं और उसके ऊपर फिर वो अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं?
1: जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है जो हमारे इंडिया में बन रही है, इंडिया की रैंक जब शुरू हुई थी, ये स्टार्टअप इंडिया की जो मिशन है सरकार की, वो 2016 में स्टार्ट हुई थी केवल 50 स्टार्टअप्स के साथ, और आज की डेट में हमारे पास DPIT रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है, दैट इज अराउंड 92,000 प्लस करेंटली अभी फिलहाल। तो हम अगर बात करें, ये सारे 90,000 के जो स्टार्टअप्स है, ये अपने अपने डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, कोई AI ML में, कोई अपने क्वांटम में, मशीन लर्निंग में, ब्लॉकचेन में, इतने सारे नए तरीके के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। बट एक रूफ में अगर हम बात करें कि अगर हर स्टार्टअप कोई अपना अलग करना चाह रहा है, कोई अपना ऐसा हो, बहुत हमने केसेस देखे हैं जहां पे स्टार्टअप्स अपने डायरेक्शंस को चेंज लेते हैं, उसको हम कहते हैं अडैप्टेबिलिटी इन द टर्मिनोलॉजी, कि वो अडैप्ट कैसे करते हैं अपना इन द रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ऑफ द मार्केट। कि अगर आज वो टेक्सटाइल में है तो कल लेदर में है, क्योंकि उसको टेक्सटाइल से इतने तरीके से, एक तरीके से उसको या तो दे आर नॉट helping it to earn more revenue, or it is they are facing challenging to raise funds, and they are moving into new directions also. It is completely acceptable, it is good, and it because they are exploring new things, और वो उनको नए दिश, उनको चाहते हैं कि नए चीजें explore करें, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि AI ML और ऐसा चीज है जो हर एक जगह पे जा सकती है। आप एक स्पोर्ट्स मैच की बात करो, या आप हॉस्पिटल की बात करो, या आप एक पूरा डायरेक्टरी की बात करो, जैसे हमारे आधार कार्ड हुए हैं, या जो भी हमने आइडेंटिटीज गवर्नमेंट ने आज तक बनाई है, ये कोई कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है अगर AI ML हमारे पास नहीं रहता या टेक्नोलॉजीज नहीं रहते। बायोमेट्रिक्स की बात करो, अब जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है, इवन तक कि आप रेलवे स्टेशन में आउट रेलवे को मॉनिटर करने के लिए भी आप रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग लगा सकते हो थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजीज, राइट? तो ऐसे इससे कि हमारे एक्सीडेंट्स जो हमने अभी फिलहाल देखे हैं, 2-3 एक्सीडेंट्स बहुत भयानक तरीके के एक्सीडेंट्स हुए, इसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो स्टार्टअप्स के पास टेक्नोलॉजी है, उनको इंडस्ट्री का वैलिडेशन की जरूरत है, इंडस्ट्री की टेस्टिंग की जरूरत है। वहां हम कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे पास है, जुड़े हुए हैं PSA ऑफिस के थ्रू, करीबन 2000 के ऊपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट से हैं। IISER की बात करो, NITs की बात करो आप, या NIT CSIR की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो आप, ICER, तो वहां पे सारे ये लोग हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना कोई ना कोई जर्नल्स लिखे हैं, अपने अपने एक्लेड्स हैं, और हमने रेटिंग मैकेनिज्म्स भी डाल दिए हैं प्लेटफॉर्म में, ताकि इंडस्ट्री को आसानी हो और स्टार्टअप्स को भी इजी हो कि वो सिलेक्ट कर पाए कि किस तरीके के मेंटर्स चाहिए उनको, और इसके लिए कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये गवर्नमेंट की ऑफरिंग है, ये निःशुल्क है अगर सीधी बात पे कहें। और इसके अलावा हम इंटरनेशनल एसोसिएशंस के साथ काम करते हैं, जैसे USAID है, फेलोशिप प्रोग्राम्स करते हैं, वुमेन इन स्टेम में हम लोग EY स्टेम के थ्रू हमने खगोल चला डिस्कवरी प्रोग्राम किए हैं, एस्टेरॉइड्स जिनमें 14 लड़कियां को हमने चुने हैं, उसमें से 3 लड़कियों को नासा में ट्रेनिंग कराने के लिए हमने भिजवा दिया है, तो वहां पे उनको सपोर्ट मिल रही है। प्लस अगर हम बात करें किसान के लिए, तो हमने किसान मित्रा हमने डेवलप किया है इसरो के थ्रू, और नबार्ड और हिंदुस्तान यूनिलीवर उसमें मिलकर काम कर रही है। जैसे आत्मनिर्भर कृषि ऐप उन्होंने डेवलप किया, जिसमें कि वाटर टेबल, सॉइल, मॉइस्चर कॉन्टेंट, इन चीजों को कन्वर्ट करके किसानों की भाषा में, लैंग्वेज में उनको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस फॉर रेवेन्यू अर्निंग्स एंड मार्जिन, you know, increasing the revenue, and also can leverage the FPO, जो FPO उनको मिलता है. तो इस तरह के कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. अगर आप मंथन प्लेटफॉर्म पर आओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा.
2: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मंथन, आप कुछ बता सकते हैं?
1: हाँ जी, ये प्लेटफॉर्म जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है. ऐसे सरकार ने बहुत सारे के प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो केवल R&D के ऊपर है. इंडिया CSR के भी पोर्टल्स हैं जो CSR है, लेकिन हर पोर्टल की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर पोर्टल की अपनी अपनी कॉस्टिंग्स होती हैं, वो होती है. तो इस पोर्टल की खासियत ये है कि दिस हैज बीन डन ओनली थ्रू क्राउड फंडिंग, इंडस्ट्री सपोर्ट, नॉट गवर्नमेंट सपोर्ट. हमने गवर्नमेंट से कोई मतलब गवर्नमेंट हैज नॉट सपोर्टेड इट, इट इज इंडस्ट्री ड्रिवन, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन है. इंडस्ट्री को हमें अगर आगे बढ़ाना है तो, और स्टार्टअप्स को हेल्प करना, तो इंडस्ट्री को उनको बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो फंडिंग है ये पूरी एक्ट ग्रांट्स, AWS और मिस्टर लक्ष्मी नारायण जी जो कॉग्निजेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने अपनी वॉलंटरी फंडिंग दी है इस प्लेटफॉर्म को. और 15 अगस्त को पिछले साल हमने
2: इससे ये जो हमारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं ये कनेक्ट हो सकते हैं
1: इसके सारे एंटरप्रेन्योर्स, और हम ऑलरेडी ऑनबोर्ड करते हैं इसमें. हमने कुछ टेम्पलेट्स डाले हैं जो फॉर्म्स है, इस फॉर्म्स को इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट बता सकती है कि हम स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम दे रहे हैं, आपको फेलोशिप प्रोग्राम्स दे रहे हैं. और फेलोशिप्स और मेंटरशिप इसलिए क्योंकि हर एक जगह में और रिसर्च फेलोशिप्स की जो बढ़ावा है इसको देने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ग्रास रूट इनोवेटर्स को ये नहीं पता होता कि वो उनकी या तो उनकी क्वालिफिकेशंस कम होते हैं या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है. तो दैट सिक्योरिटी नीड्स टू बी देयर, राइट? अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हर एक चीज में सिक्योरिटी चाहिए इंसान को. सो इफ यू टॉक अबाउट वाटर सिक्योरिटी, आज की डेट पे दिल्ली में जो हम पानी पीते हैं वो भी सेफ नहीं.

0: राइट आज की डेट में अगर हम फूड की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं FSSAI इसको कहीं ना कहीं पुश दे रहा है फॉर एवरी अदर डे वी गेट टू सी न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जो भी लाइसेंस्ड है. तो हर एक जगह पे अपने अपने सिक्योरिटीज की जरूरत है और इसको मॉनिटर करने की जरूरत है. इसलिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत है जहां पे इंडस्ट्री आए और इक्वली सपोर्ट करे थ्रू इक्विटी फंडिंग और अदर मींस दैट दे कैन डू विद द स्टार्टअप्स.
1: तो बहुत अच्छा आपने बताया. हम मंथन पोर्टल के बारे में जरूर और जानकारी लेंगे. दो तीन चीजें जो आपने बहुत अच्छी बोली मुझे अच्छा लगा. एक जो मेंटरिंग का बताया, तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर सही गुरु और सही मार्गदर्शक किसी को मिल जाए तो वो उसको कहां तक लेके जा सकता है, कैसे उसे पार लगा सकता है. तो बहुत जरूरी ये चीज है और यही मार्गदर्शन और मेंटर की फॉर्म में जो आज के टर्म में स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत पॉपुलर है कि बहुत सारे मेंटर्स हैं, लेकिन कौन ऐसा मेंटर है जो सही मायने में आपके लिए एक मार्गदर्शक बन जाए और जो भी समस्याएं हमारे स्टार्टअप फेस कर रहे हैं इससे उन्हें पार लगा पाए और जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, जो उनके स्टार्टअप का एम है, जो उनका विजन मिशन है, वहां तक उनको सही तरीके से कैसे पहुंचना है, ये मार्गदर्शन अगर हम इस मंथन प्लेटफॉर्म के थ्रू और PSA के अलावा बाकी इनिशिएटिव्स के थ्रू अगर स्टार्टअप्स को मिल रहा है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी बात और स्टार्टअप्स के लिए नहीं हो सकती. और उसके लिए भी उन्हें कोई खर्चा नहीं करना है तो ये दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि स्टार्टअप्स हम सभी जानते हैं
0: ऐसे ही 500 स्टार्टअप्स को ऑलरेडी उनको वो कर चुके हैं, हम उनको फंडिंग दे चुके हैं.
1: ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि सभी स्टार्टअप्स हम जानते हैं उनके पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो फंड्स की लिमिटेशन होती है. अगर बहुत ज्यादा खर्चा उनको इसमें नहीं करना पड़ रहा, उन्हें वो सपोर्ट मिल रहा है तो
0: और जहां हमारे पास जैसे एलन मस्क जैसे लोग हैं जिनके पास फंडिंग की कैपेबिलिटीज हैं और इतने यू नो इंटरनेशनल में इतने कुछ करते हैं वो, तो उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां पे उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया और वो कोहोर्ट्स बना रहे हैं. दो प्रोग्राम्स ऐसे मैं बता सकता हूं जो एलन मस्क की जो एक्सप्राइज फाउंडेशन है उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आउटरीच किया है और उनको बेनिफिट मिला है, स्टार्टअप्स उन्होंने सिलेक्ट किया है. एक जो पहला चैलेंज था वो है डीकार्बनाइजेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, तो उन्होंने ये चैलेंज हमारे प्लेटफॉर्म पर थ्रो की थी और बहुत सारे स्टार्टअप्स में पार्टिसिपेट किया. सिमिलरली अभी वो वाइल्ड फायर जैसे ऑस्ट्रेलिया में अपने वाइल्ड फायर की इश्यूज देखी होगी, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में, ब्राजीलियन अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज हमारे फॉरेस्ट में कवर्ड होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें अगर कुछ करना है, वाइल्ड फायर के लिए एक्शन लेना है तो उन्होंने उसमें भी फंडिंग डाला है. तो ये करीबन कुछ नहीं तो अपने आप में 1500 करोड़ की एक की बजट्स हैं जो बजट्स के थ्रू स्टार्टअप्स को.
1: तो ये सारी जो फंडिंग है ये मंथन पोर्टल के थ्रू सब स्टार्टअप्स को,
0: ये सारे स्टार्टअप्स इंडियन स्टार्टअप्स को जा सकता है मंथन पोर्टल के थ्रू, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया की जो पोर्टल है वो भी इंटीग्रेटेड है अभी मंथन पोर्टल पे. और किस केवल ये नहीं, कितने जितने भी मंत्रियां हैं मतलब मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, वो सारे मंत्रालय के जैसे जल शक्ति है या फिर आपके पंचायती राज बताओ आप, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करो, या कोल मिनिस्ट्री बोलो, सारे मिनिस्ट्रीज के जितने भी स्टार्स जी के ग्रुप पे तौर पे उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया, अराउंड 215 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से करीबन 50-60 प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर हैं जो केवल स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं. इनफैक्ट टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी है उसमें भी, आपको 5G 6G इन पे भी है, बहुत सारी चीजें.
1: तो ये तो और आपने एक बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि जैसे आपने पहले बताया था कि स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर जब भी कोई होता है तो वो कहाँ किस दिशा में जाएगा उसके लिए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए. तो ये हम लोगों ने भी बहुत स्टार्टअप्स के साथ काम करते हुए देखा है कि आपने पहले क्या किया है वो इतना जरूरी नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस में डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन कोई भी स्टार्टअप किसी भी एक बिजनेस से डिफरेंट कैसे होगा, तो जब तक वो किसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा जो बहुत लार्ज स्केल पे एग्जिस्ट करती है, बहुत जगह पर है, और अगर उसको वो सॉल्व कर दे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस निकल के आ सकता है या उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर आना ही, ये खासकर जब हम युवाओं से बात करते हैं, स्टूडेंट्स हमारी शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर है उनसे बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उनके सामने प्रॉब्लम होती है कि मैं किस फील्ड में काम करूं. उनके पास पैशन है, वो काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाऊं जिसको सॉल्व करने से मेरा एक स्टार्टअप, एक अच्छा बड़ा स्टार्टअप खड़ा हो जाए. तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट मंथन पोर्टल से आ रही है तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को, हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को उस मंथन पोर्टल पर जरूर जाना चाहिए और आप जाकर वहां देखें. वहां से आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी, बहुत से ऐसे नए आइडियाज मिलेंगे जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और बहुत सी मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वहां पे हैं जो आपको उसमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं. तो ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं श्रद्धा मैडम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा. हमारे स्टार्टअप्स जब, खासकर जो यंग युवा हमारे हैं, ये जब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक टीम बिल्डिंग की, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो कोई एक एक आदमी अकेला नहीं चला सकता, आपको एक टीम बनानी पड़ती है और उस टीम में भी आपको मल्टीपल क्वालिटीज चाहिए। तो ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटीज है जो आप लोगों ने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी काम किया होगा या ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम किया होगा जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया और फिर आगे वो बढ़ते चले गए, तो थोड़ा सा इन स्पेशल क्वालिटीज के बारे में हमें बताइए जो किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा करने में मदद कर सकती है।
2: तो मेरे जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले आपका जो है आपका खुद का सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस, आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपका जो आइडिया है वो कितना, उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो उस वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए आपका एक जो टीम बिल्डिंग है वो अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास का जो, आपके साथ जो लोग काम करना चाहते हैं वो आपके ही लाइक माइंड के होने चाहिए, मींस लाइक माइंडेड पीपल्स जो अगर होंगे, यू आर सराउंड विद लाइक माइंडेड पीपल्स, तो उससे क्या है कि आपका आइडिया और उभर के सामने आए,
1: एक दूसरे को सपोर्ट कर,
2: एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज तो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है टीम बिल्डिंग। टीम का मतलब क्या होता है? टुगेदर ईच अचीव्स मोर। तो अगर हम देखें, हम जब साथ में काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो हर कोई अपने अपने पॉइंट्स लेके आएगा और उससे जो रिजल्ट आएगा वो और भी अच्छा होगा बजाय हम अकेले कुछ करें। तो एक तो हो गया टीम बिल्डिंग, दूसरा हो गया सेल्फ अवेयरनेस, तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में जब हम बिजनेस कुछ स्टार्ट करते हैं, कोई आइडिया को लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी जो चॉइसेस हैं, आपने क्या चूज किया है, आपकी टीम कैसी है, आपके टीम के लोग कैसे हैं, उनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर कैसा है जो कि आपके स्टार्टअप में हेल्प करें, तो वो जरूरी है, क्योंकि आपके चॉइसेस ही आपके डिसीजंस को हेल्प करेंगी बनने में। और कभी भी कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता है, क्योंकि आपने जब कोई डिसीजन लिया होगा तो वो डिसीजन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सही होगा। कभी कभी टाइम सही नहीं होता है, बट डिसीजन सही होता है। तो कभी भी डिसीजन से बैकआउट नहीं करना है कि हमने डिसीजन लिया, नहीं नहीं वो गलत हो गया, तो ये नहीं सोचना है। तो इसके लिए आपको एक इनर मोटिवेशन हमेशा रखना है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको आपके टीचर्स, फैकल्टीज और आपके बड़े सभी लोग कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहते हैं, बट जब तक आपका इनर मोटिवेशन नहीं है, जब तक आप अपने बारे में नहीं जान रहे हैं, तो वो हेल्पफुल नहीं होगा।
0: बेसिकली जो स्टार्टअप्स में एक बार ये बात इस, क्योंकि आप ये इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे एक बात कहना होगा इसमें कि अगर हम स्टार्टअप्स बिल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्टअप्स शुरू होती है वो शुरू होती है आइडिएशन से। आइडिएशन जो है, जो कह रहे हैं मैम कि आइडिया है, एक आइडिया, आपको ये नहीं सोचना है कि ये आइडिया अच्छा है या बुरा है या किस तरीके, अगर आप खुद ही उस आइडिया को, मतलब आप अगर खुद आइडिया को यूज करते हो, मैं अगर कुछ भी एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक टू बेसिक चीज, अगर आप मतलब पैडमैन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन में उन्होंने खुद ही अपने आप को उस शूज में डाल के उन्होंने चेक किया, टेस्ट किया, और उसके इम्पैक्ट की, सोशल इम्पैक्ट उसका क्या हो सकता है, क्या है, कहां जा, क्योंकि उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगी कि क्या ये कमर्शलाइज हो पाएगा, वो तो इंडस्ट्री की बात है। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये आइडिया पुट करने के लिए अगर आपको कोई, हो सकता है 10 में से 9 आदमी सुने ही ना, इसका मतलब ये नहीं कि आइडिया खराब है। आपका आइडिया को जो है आपको करेक्ट लोगों से करेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो ये कह रहे हैं कि अगर आप सही लोगों को नहीं चुनोगे तो आपका जो है टाइम, एनर्जी, पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा। एंड टुडेज, इन टुडेज वर्ल्ड, स्पेशली इन अ वुका वर्ल्ड, टाइम इज मनी। तो इसका जो है, आपका नेबर्स हो सकता है, आपका कजिन्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, सिस्टर, ब्रदर, एनीबडी, रिलेटिव, डोंट हेजिटेट टू आस्क और अप्रोच एनीवन इफ यू आर रियली प्लानिंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप। यू शुड टॉक टू मल्टीपल पीपल, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप शेयर भी कर सकते हो। सब मतलब सुनना सबका है, करना अपना है।
1: ये बहुत अच्छा आपने बताया।
2: ये तीन पॉइंट्स और थे जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जैसे कि सर ने बताया कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, अपने हर डिसीजन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आपके अंदर एक कुछ करने की इच्छा होगी कि हाँ, क्योंकि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो मुझे अच्छा करके दिखाना है, मेरी टीम को अच्छा बनना है। तो इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल, बी एंथुजियास्टिक और इम्प्रूव योर नेटवर्किंग स्किल्स. आजकल लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं और बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, तो ये एनफ नहीं है.
0: लिंक्डइन,
2: हाँ ये एनफ नहीं है. लिंक्डइन के थ्रू भी आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए. कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, वहां पे आपको कई सारे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो जिनसे आप कनेक्ट होंगे, जिनसे आप बात करेंगे, जिनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है. दूसरी चीज, जब आप सपोर्ट ले रहे जा रहे हैं तो ये टू वे, एक तरह से टू वे स्ट्रीट है. तो उसमें आप सपोर्ट दे भी रहे हैं और आप सपोर्ट ले भी, मतलब आपको सपोर्ट मिल भी रहा है आप, और आप भी सपोर्ट किसी को दे. तो यू हैव टू एक्सचेंज द आइडियाज. तो नेटवर्किंग स्किल्स इम्प्रूव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का. और अगर लास्ट पॉइंट देखें तो लास्ट पॉइंट आपका है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर. क्योंकि बिजनेस है, स्टार्टअप है, तो स्टेप किसी ना किसी स्टेप पे आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो रहे हैं, तो उसी फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह मान के आगे बढ़े. अब जैसे कि थॉमस एडिसन का एक कोट था, उसने कहा था कि आई हैव नॉट फेल्ड. जो उसने लाइट बल्ब बनाया था उससे पहले तो उसने ये बोला था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 वेज नॉट टू ट्राई. 10,000 वेज जो है उनको ट्राई नहीं करना है, उसने वो फाइंड करा, बजाय इसके कि वो इसको फेलियर माने. तो लाइट बल्ब
0: इन्वेंशन,
2: हाँ करेक्ट फॉर्मूला. तो हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ अगर हम देखेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं.
1: बहुत अच्छा आपने कहा, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपने सुनो शादा एफएम के श्रोताओं के साथ दोबारा जल्दी जुड़ेंगे.

0: मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सुनो शारदा से जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोतागण। और हम स्टार्टअप चर्चा सीरीज में आज उपस्थित हैं हमारे अतिथियों के साथ सोमिल मुखर्जी जी और मैडम श्रद्धा अवस्थी जी के साथ। तो मैडम, मैं अभी ब्रेक से पहले हम लोगों ने जो बात की, आपने बहुत अच्छी कुछ चीजें बताई कि फेलियर एक ऐसा पार्ट है जो हर एक स्टार्टअप जर्नी के अंदर एक रहता ही है और हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। फेलियर से हमें रुकना नहीं है, हमें उससे सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। क्या नहीं करना है वो जानना है और आगे क्या अलग करना है वो हमें उससे जानना है। और एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई थी, जैसे ऐसा माना जाता है और मैं भी ये मानता हूं कि जानकारी की और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, हमेशा आपको जानते रहना है, नया नया सीखते रहना है। तो एक वर्ड आपने आज मुझे नया बताया कि टीम की फुल फॉर्म भी कुछ होती है। मैं चाहूंगा हमारे सुनो शारदा एफएम के श्रोताओं के लिए आप एक बार फिर से बताएं जो टीम के बारे में आपने बताया था कि टीम एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इस वर्ड का।
1: टीम का मतलब जैसे हम लोग जब कुछ काम करते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं कुछ टास्क को या प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए हम जो है सोचते हैं, अकेले तो एक आइडिया जनरेट हो नहीं सकता, मतलब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमें एक टीम बनानी होती है। तो बेस्ट जो लोग हो, मतलब जो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, तो उनको हमें कनेक्ट करना होता है। तो उस कनेक्शन से क्या होता है कि हमारा जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी और बेहतर होता है। तो टीम का मतलब ही यही है, जैसे आपने फुल फॉर्म पूछा तो टुगेदर ईच अचीव्स मोर। तो हर किसी की क्योंकि क्वालिटी है, तो हर कोई एक साथ मिलके उस अपनी ही क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है।
0: तो मतलब मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक और एक मिलके 11 बनाना है, एक और एक दो नहीं करना है, हमें एक और एक 11 बनाना है। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। स्वामी जी, मैं आपसे थोड़ा सा और जानकारी चाहूंगा। मंथन पोर्टल पर, जैसे मैं खुद भी उसका यूजर हूं और मैंने देखा है कि बहुत सारे नए नए उस पे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स आती रहती हैं, तो किस तरह से आप इतने सारे इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज हैं, इन सबको आपने जोड़ा है और कैसे इसमें स्टार्टअप्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं और क्या नया इसमें कुछ आने वाला, आप हमें कुछ जानकारी दें।
2: जी, तो देखिए मंथन पोर्टल जो है ये बेसिकली जो है नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज डिसेमिनेशन और आइडियाज की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, जो स्टार्टअप से या ग्रासरूट इनोवेटर्स से आती है। तो इसके लिए हम डिमांड साइड की बात करें, अगर हम दो तरीके के काम करते हैं। एक तो डिमांड साइड जो कि डिमांड ड्रिवन है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया एग्जांपल्स पहले आपको, स्टेट गवर्नमेंट या ग्लोबल फाउंडेशंस या फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलैटरल एजेंसीज, सोशल एंटरप्राइजेस, कई तरीके के ऐसे हैं जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं मंथन प्लेटफॉर्म पर, कि उनकी सीएसआर की रिक्वायरमेंट है, वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना चाहते हैं या उनको इम्प्लीमेंट करना है या उनको मार्केट रेडी की चीजें चाहिए। और हमारे एक तरीके, दूसरे तरीके स्टार्टअप्स और इको एमएसएमईज और एनजीओज, फिर अपने जो भी है इनक्यूबेटर्स, फिर अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स की बात करें, जो जोधपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और भुवनेश्वर जैसे शहरों में ऑलरेडी है, एस्टेब्लिश्ड है, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी जो है वो रिव्यू करती है उसको। ये सारे सप्लाई साइड के पिलर्स हैं हमारे। तो हम क्या करते हैं, हम इनके प्रपोजल्स जो है, जो इनोवेशन है स्टार्टअप्स, 80,000 स्टार्टअप्स और जितने भी हैं टोटल, इनके हम सारे प्रपोजल्स को शोकेस करवाते हैं। दिस इज एन फ्री अपॉर्चुनिटी कि इनकी प्रपोजल्स जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे शोकेस हो सकता है। तो आपको केवल उसमें टाइप करना है कि आपको एथेनॉल के व्हीकल्स की सिमुलेशन चाहिए या आपको उसकी नॉलेज बनाने के लिए कुछ मॉड्यूल्स बनाने, तो उसका आपको सर्च करना है उस प्लेटफॉर्म पे और उसके अंदर आपको 10 प्रपोजल्स दिखेंगे।
0: मतलब इसमें ना सिर्फ हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल रही है बल्कि जिन लोगों ने उसमें काम कर लिया है तो वो भी हमें इसका सोल्यूशन भी वहीं पर मिल जाएगा,
2: सोल्यूशन मिल जाएगा और उसके साथ साथ वो सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी एमओयू साइन हो गया और वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो निवेंस करके एक जो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो टेली मेंटल हेल्थ की प्रोजेक्ट है, उनको हमने अभी फिलहाल ही दो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं फैसिलिटेट। एक लोएज है जो एमएनसी है पीएफएसआई सेक्टर में, वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डिमेंशिया डिजाइन स्टूडियो जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स होते हैं प्लस सिजोफ्रेनिया करके जो डिजीज होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है एंड ये अनडिटेक्टेबल होती है बीमारियां, ये डिटेक्ट नहीं होती है इजिली बिकॉज इनके डायग्नोसिस करने वाले जो डॉक्टर्स उनको पास भी ये टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो किस तरीके से हम इसको रिहैबिलिटेशन और इसको इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके फैसिलिटेट करके एक स्टूडियो बना सकते हो, एक फैसिलिटी बना के उनको सपोर्ट करने के लिए हमने फंडिंग दिए हैं। निमैंस उस पर काम कर रही है और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करवाते हैं थ्रू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये इस तरीके के सारे आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो हमें इंडस्ट्री खुद आके बताती है। इस तरीके के PSUs हो गए, तो PSUs में जैसे आप अगर BPCL की बात करें या HPCL की बात करें, गेल की बात करें, सेल की बात करें, ये सारे नवरत्नास हैं और इनके पास जितना भी इनकी CSR और R&D एक्सपेंडिचर होती है तो ये अपना जो डाइवल्ज जो स्पेंड है, स्पेंडिंग जो पैटर्न है, हम देखते हैं कि CSR स्पेंडिंग में भी पैटर्न की अनयूटिलाइजेशन होती है क्योंकि वो स्पेंड ठीक तरीके से कर नहीं पाते, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनको या तो उनका मतलब इशू हो जाता है या तो उनका डायरेक्शन आता है कि PM केयर्स फंडिंग में ट्रस्ट करना है, उनको हॉस्पिटल बिल्ड करने हैं। अगर हम उनको ये बताएं कि अगर आप उसी कॉस्ट के या हाफ ऑफ दैट कॉस्ट पे आप केवल 50 स्कूल में टॉयलेट्स बनाने के जगह आप उसको बायो टॉयलेट्स बनाइए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, साथ साथ सस्टेनेबल भी कर पाएंगे और वो भी कम कॉस्ट पे, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस को हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं जो भी क्रेडिबल है और उसका एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का सिनेरियो।
0: जरूर, मुझे लगता है हमारे देश में इतने सारे यंग इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और ये सभी इंडस्ट्रीज हैं, ये लोग बहुत सारा अपना एक समय और पैसा फंड्स के ऊपर लगाते हैं, रिसर्च के ऊपर लगाते हैं।
2: जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे जितने भी नवरत्नास हैं हमारे इंडिया में, इंडियन ऑयल, गेल, सारे PSUs को मैंडेट कर दिया है नीति आयोग ने, गवर्नमेंट ने, कि हर एक PSU के पास अपना R&D और इनोवेशन का सेल होना चाहिए। शायद आपको पता हो इंडियन ऑयल के पास ऐसे फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं फरीदाबाद में जहाँ पे उन्होंने 5 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस भी बनाए हैं, सेमी कंडक्टर पे, करोशन पे, ऐसे बहुत सारे चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी और भी बहुत सारे जो डायरेक्टली हो सकता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें, और इसमें भी स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी अहमियत रोल है कि वो अपना जितना ये जितने भी सेंटर्स क्रिएट होंगे इन सबको वो इंक्यूबेट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल गाइडेंस मिल सकती है। ये PSUs हमारे पास आके ये बताते हैं कि ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन लोगों ने हमें इन सारे जितने भी अफिलेटेड कंपनीज हैं उनको डायरेक्ट रिकमेंडेशन लेटर्स भेजे हैं मंथन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइजेशन करने के लिए, इनके R&D और इनोवेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, तो ये PSUs के पास जितने भी फंडिंग अनस्पेंट बजट्स हैं वो इस तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, क्योंकि अभी CSR MCA रूल्स के दौरान हमें ये भी पता है कि जो भी CSR की फंडिंग है वो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और जो ICRs और जो भी लैब्स हैं इन सब इंक्यूबेटर्स को सबको जा सकता है और इसमें R&D इनोवेशन को भी कर सकता है क्लॉज 9A के अकॉर्डिंगली।
0: तो ये जितने भी PSUs हैं इन सबके जो इनोवेशन सेंटर है तो मंथन पोर्टल के थ्रू इन तक पहुंचा जा सकता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमें इतनी सारी जानकारी एक ही पोर्टल पे मिल जाती है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता है। श्रद्धा जी, मैं थोड़ा सा आपसे को फाउंडर्स और हमारे स्टार्टअप टीम बिल्डिंग के बारे में और जानना चाहूंगा। आप हमारे सुनो शारदा FM के श्रोताओं को अगर बताएं कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम जो स्टार्टअप्स फेस करते हैं, जैसे बहुत छोटी छोटी वो टीम के साथ वो काम करते हैं और बहुत सारी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, और कैसे वो आपस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें, कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इसके लिए स्टार्टअप्स को और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले आपका जो डिसीजन है, मेन तो डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होगा तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आप बेस्ट ही सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये ना कि हाउ टू फाइंड अ राइट को फाउंडर, अगर हम देखें तो आपका जो कहने का मतलब है वो शायद यही है। तो एक अगर आपको को फाउंडर चाहिए, बिकॉज अकेले तो कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता, मतलब यू हैव टू मेक अ टीम फॉर दिस। तो इस टीम को बनाने के लिए आपके को फाउंडर चाहिए। आपको को फाउंडर के लिए अगर आपको मतलब आपके रिक्वायरमेंट है और अच्छा को फाउंडर चाहिए, परफेक्ट को फाउंडर चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो जब आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तब आप जाके आपको क्या चाहिए वो आप जानते हैं। मीन्स आपको अपने को फाउंडर में क्या चाहिए वो वही चाहिए होगा जो कि आपके में नहीं है। अब यही सोचेंगे, तो आपके अंदर जो क्वालिटी नहीं है आप अपने को फाउंडर में चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी उसको आती हो या वो इनोवेटिव स्किल्स हो उसके अंदर या वो नॉलेज हो
0: KSA। जैसे कि अगर मैं टेक्निकल से हूँ तो मुझे शायद कोई मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए, तो मेरी मार्केटिंग को हेल्प जो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगा।
1: हाँ, जो डिजिटल में अच्छा हो तो डिजिटल मार्केटिंग वाला हो, और जो राइटिंग में अच्छा हो तो वो मतलब एक्सप्लेन कर सके कि हाँ कैसे कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करे, इस तरीके के। तो ऐसे आपको लोग चूज करने हैं। तो परफेक्ट को फाउंडर के लिए तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए, फिर आप वो ऐसा पर्सन चूज करिए जो आपके गैप्स को फिल कर सके। मेन है टू फिल दोस गैप्स जो आपके अंदर नहीं है। तो इसी तरीके से एक टीम डेवलप हो सकती है। और फाइंडिंग अ को फाउंडर, राइट को फाउंडर, इज जस्ट लाइक फाइंडिंग अ बिजनेस सोलमेट। तो इट विल टेक टाइम लगता है कई बार, लेकिन वर्थ है। तो मतलब कई बार, क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये सोच के इन्वेस्ट हमें करना चाहिए कि हमें आगे इसका लॉन्ग टर्म जो है फायदा मिलेगा। तो इसी तरीके से ये है कि आप करिए तो अच्छा।
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाले अगर को फाउंडर होंगे तो अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स
1: काम आसान होगा, काम कम टाइम में, मीन्स टाइम मैनेजमेंट। जैसे आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट भी इसी को कहते हैं कि आप अपने काम को असाइन करें अपने टीम मेट्स के साथ। आप ही अगर सारा काम करेंगे तो आपके टीम मेट्स क्या कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगेगा कि मैं ही सब कर रहा हूँ, तो फिर प्रॉफिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है,
0: बहुत अच्छा आपने कहा। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम आती है फिर एक कहीं ना कहीं ऐसे जाकर फिर डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं आपस में,
1: अगला भी होती है। टीम मेंबर भी कहता है कि यही करने देते हैं इसी को, जब हमें क्या करना, हम तो हैं टीममेट्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये है। तो उसमें क्या है कि एक पे आता है सारा बर्डन भी आता है, स्ट्रेस भी होता है, और उसको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
0: कहीं ना कहीं वो एहसास होता है कि मैंने शायद गलती कर दी है टीम बनाकर,
2: इसी बात से मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
1: तो वही डिसीजन फिर आ गया ना, डिसीजन मेकिंग।
2: मैं मतलब बिल्कुल सही बात पे चर्चा हो रही है, और ये सबसे बड़ा अहमियत, सबसे मेन, मतलब मैं अगर बोलूं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है तो वो यही है कि नेसेसिटी ऑफ इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले जो आइडिया मैंने पहले बोल रहा था, तो उसमें क्या है कि आपको काफी रिसर्च करने की जरूरत है। एक तौर पे अगर आप एकदम से आपको सपना आया और बोला कि आप मैं कल ऐप बनाने को तैयार हूँ, सारा स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि केवल एप्स बनाने से ही सक्सेसफुल हो जाता है, केवल ऐसा नहीं है। और स्टार्टअप्स का मतलब ही एप्स होता है, एप्स इज नॉट इक्वल टू स्टार्टअप्स।
0: बिल्कुल।
2: तो इसमें बहुत रिसर्च और बहुत सारे इंटरेक्शंस की जरूरत है ताकि आपको नॉलेज पता चले। उसमें भी मंथन प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें वाइट पेपर्स हैं, एविडेंस बेस्ड चीजें हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो KPMG के साथ हमारी पार्टनरशिप है,
1: जिसे केस स्टडी करके,
2: फिर आप उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बना सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो आगे। देन वो कंसेप्चुलाइजेशन से अर्ली स्टेज जा सकता है, ऐसे मूवमेंट होती है, क्योंकि आप यहीं पे आप आधे से ऊपर डुप्लीकेट से आप यहीं पे आपका मतलब जो बैटल है एक तरीके से आप यहाँ पे तो उसको खत्म कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा को अपने अंतिम दौर में ले जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे।

0: सुनो शारदा एफएम के श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। हम स्टार्टअप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने अतिथियों के साथ सौमिल मुखर्जी जी और श्रद्धा अवस्थी जी के साथ हम इस चर्चा के अंतिम दौर में हैं। और श्रद्धा जी, मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा कि हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं और जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या हमारे आसपास के बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताइए। जैसे बुक्स हम बोलते हैं कि किसी भी इंसान का एक बहुत बड़ा साथी होता है, तो हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज रेफरेंस के बारे में बताइए जहां से उनको कुछ और जानकारी मिल पाए, वो मोटिवेशन ले पाए और ज्ञान ले पाए, या कुछ ऐसे और नए कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इनिशिएटिव्स जो हम शुरू करने वाले हैं शारदा में, या आपकी संस्था है, आप कुछ और संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें।
1: जैसा कि सर ने कहा कि बुक जो रिकमेंड करनी, जो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ वो है

0: है हमारे CISF ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ संरक्षिका की। तो उसमें हम कई सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं वुमेन रिलेटेड टू वुमेन वेलफेयर और चिल्ड्रन वेलफेयर। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो उन आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस तरीके से इनिशिएटिव है। अभी हम जो है विद पैपस्वैप एंड स्टार्टअप हब यूपी स्टार्टअप के साथ जो है हम एक प्रोग्राम शुरू करना जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी में। तो उस प्रोग्राम का नाम जो है वो है फ्रॉम बाउंस बैक फेलियर, फ्रॉम बाउंस बैक टू कम बैक। तो कैसे हम अपने स्टार्टअप को हम जो फेलियर हो जाते हैं या जो जिनको आइडियाज नहीं मिल पाते हैं उनको कैसे हम फिर से आगे बढ़ाएं, कैसे हम आगे अपने स्टार्टअप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम शारदा में। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप प्लीज ज्वाइन करिए, ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन।
1: ये तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर किसी ने इस डायरेक्शन में काम किया और वो रियली पैशनेट है और किसी वजह से वो अपने पहले इनिशिएटिव में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो जरूर उसे मदद मिलनी चाहिए कि वो दोबारा से कोशिश करे, दोबारा से खड़ा हो और वो आगे सक्सेसफुल रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस के लिए। स्वामी जी, मंथन पोर्टल और PSA से कुछ नई जानकारी जो आने वाली है, जो कुछ जिससे हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, आप बता पाए ताकि हमारे श्रोता और बाकी यूनिवर्सिटी के लोग उसके लिए तैयार रहें।
2: काफी चीजें हैं, कुछ साइंस और कम्युनिकेशन को की हम जो ब्रांडिंग की बात करते हैं या आउटरीच की बात करते हैं, इससे हम कई सारे एक्टिविटीज करते हैं जो हम पार्टनर्स के थ्रू करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के साथ हमने किया है, नेटफ्लिक्स अपना आजादी की अमृत कहानियां के लिए उनकी जो मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी जिनका ब्रेन चाइल्ड है ये प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने क्लाइमेट इनोवेटर्स के लिए 25 एपिसोड्स बनाने के लिए बताया था जो उनका विजन था। तो उसमें से हमारे ऑफिस में पहले के दो सीजन से, अभी थर्ड सीजन चल रही है, उसकी प्रोडक्शन है, उसके लिए अभी हमारे प्लेटफॉर्म से ऑफिस ऑफ PSA से हमने कुछ 10-11 स्टार्टअप्स की इनोवेशंस चूज किया है, एडुकेशन से, रिसाइकल से, देश के अलग अलग जगहों से हमने सोर्स किया है और उनको हमने सबमिट किया 50-60 इनोवेशंस। उसमें से वो 10-11 इनोवेशंस वो गोवा फिल्म फेस्टिवल में दिखाएंगे। ऐसे ही और अमेजन प्राइम के साथ अभी हमने सॉफ्ट मीडिया लॉन्च इन्वाइट किया है, तो उसमें ग्रासरूट इनोवेटर्स की जो स्टोरी है क्या चीजें उनकी जरूरत होती है मेंटरशिप की, जो हम बात कर रहे हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, उसकी शोकेसिंग के लिए उन्होंने 10 स्टार्टअप सेलेक्ट किए हैं और वो इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे डायरेक्टली और उसके ऊपर रियलिटी सीरीज आएगी। ऐसी DD किसान के ऊपर से भी जुड़ा हुआ हमारा IFFCO की जो फंडेड प्रोग्राम है उसमें भी कुछ 16 एपिसोड्स जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर में किस तरीके के टेक्नोलॉजीज यूटिलाइजेशन होते हैं, प्लस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ भी हमारा टाइप्स है बी इंस्पायर्ड साइंस कम्युनिकेशन सीरीज के लिए। अगर आपके जितने भी स्टार्टअप्स हैं आपको इंडिया साइंस फेस्टिवल में वेलकम है जो बेंगलोर में 10 से 12 अगस्त के लिए है, अगर आपको जुड़ना है आप केवल मंथन प्लेटफॉर्म पर जाके हमें रीच आउट कर सकते हैं ईमेल पर, तो हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। दे आर फ्री टू रजिस्टर एंड एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्ले इनोवेशंस आल्सो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ रही है, उसके सोल्यूशन भी आ रहा है, सपोर्ट सिस्टम भी आ रहा है और जो लोग काम कर चुके हैं उन्हें आगे कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए, जानकारी उसकी कैसे सबको मिले, तो सभी चीजें एक ही जगह से मिल रही है, तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा किसी के लिए।
2: मार्केटिंग की बहुत जरूरत है।
1: बिल्कुल, ये तो अब माना ही जाता है कि अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो वो जानकारी जब दूसरों के पास जाएगी तो वो और लोगों को मोटिवेट करेगा और उसके खुद के लिए भी मोटिवेशन ही होता ही है। वो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, हमारे अतिथियों का, आपने अपना समय निकाला और आज यहाँ पर आए शारदा यूनिवर्सिटी में और सुनो शारदा FM के हेल्प से हमने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया, प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पैपस्वैप कंपनी का, दिव्यांशु जी का, जिनकी मदद से हम आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं इस स्टार्टअप चर्चा श्रृंखला के अगले एपिसोड के लिए हम बहुत जल्द फिर से उपस्थित होंगे और विशेष अतिथियों के साथ। सुनते रहिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सुनो शारदा FM के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे स्टार्टअप चौराहा। इस स्टार्टअप चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे सौमिल मुखर्जी, जो कि एक्सपर्ट हैं इन मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, वर्किंग एज कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरे गेस्ट थी

डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड सर्टिफाइड एनएलपी कोच, वाइस प्रेसिडेंट संरक्षिका, द वुमन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ सीआईएसएफ ग्रेटर नोएडा यूनिट, और इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी। आशा करता हूँ ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। वक्त है आपसे अनुमति लेने का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना आपको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: तुम्हारा टैंक चल रहा है। अबैंडन टैंक राइट नाउ।

0: न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर।
1: अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट की मैं लेकर आऊंगा।
2: चलती है सांसें जिसकी, हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है।
1: सर लड़ाई होने वाली
2: बनता है।

0: हम फौजी हैं, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स।
1: और तो उसे भी मिला था अब जाने के लिए कमबख्त माना नहीं। लड़ता रहा।
2: एक मिनट, एक इंच पीछे नहीं हटेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: Beautiful songs, Inqilabi Ziddi from the movie Gandhi Talks. Aur isko dhun se sajaya hai A.R. Rahman. Vocals, Shreya Ghoshal. Lyrics, Kumar. All on Suno Sharda 90.8 FM. Inqilabi Z.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंज से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making is a creative field. And if you think creative, तो ये फील्ड आप ही के लिए है, तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media Film and Entertainment, which makes you industry ready.
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.
8: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
9: सारे शहर में नाम तुम्हारा दीवारों पे लिखता है।
10: इतनी टाइम नहीं है सबके लिए, सबके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ।
11: किसने रोका?
9: सारे

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: गगन कोकरी फतेह।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
0: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
1: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है, ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में, पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती है और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय, गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें। थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शादा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सबका समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
0: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है। अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है, जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: ये हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।